और जिसका नामे आमाल उसकी पीठ के पीछे से दिया जाएगा तो वो मौत को पुकारेगा और दोजख में दाखिल होगा। वो अपने अहलो आयाल ही में मगन रहता था, वो तो ख्याल करता था कि अल्लाह की तरफ लौट कर न जाएगा। क्यों नहीं, उसका परवरदिगार तो उसको देख रहा था। सो मैं शाम की सुर्खी की कसम खाता हूं और रात की, और जिन चीजों को वो इकट्ठा कर लेती है उनकी, और चांद की जब वो पूरा हो जाए, कि तुम लोग दर्जा बदर्जा जरूर चढ़ोगे। तो इन लोगों को क्या हुआ है कि ईमान नहीं लाते, और जब इनके सामने कुरान पढ़ा जाता है तो सजदा नहीं करते। चूंकि आयत सजदा तिलावत की गई है, लिहाजा सामीन पर सजदा वाजिब है।

0: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाए 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: मेहरान आयरन स्टोर हालानी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
3: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश, आई रंग वगैरह बाजार का बारियत दस्तयाब आई।
2: हाँ यचो, मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालानी।
3: राब्ते लाए प्रोपराइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 आई 02424601000।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

GFM 88 जे नेटवर्क तां जंहिंमें सखर लाड़काणो मीरपुर खास मोरो ऐं मेरापुर सकरंड मटियारी ऐं मातली स्टेशन तां त साईं मुंहिंजा तव्हां दोस्तनि लाइ अॼु असां हिकिड़ो सुवाल खणी आया आहियूं जेको तमामु आसान सुवाल आहे ऐं असांजो सुवाल आहे त ATM जेको आहे उहो शॉर्ट फॉर्म आहे ATM जो फुल फॉर्म छा आहे तव्हांखे इहो ॿुधाइणो आहे त ATM जो फुल फॉर्म छा आहे जेका ATM मशीन हूंदी आहे जितां असां कंहिं बैंक मां पैसा कढंदा आहियूं उनखे ATM मशीन चइबो आहे त उन ATM मशीन जो जेको ATM नालो आहे उहो शॉर्ट फॉर्म में नालो लिखियलु आहे इन जो फुल फॉर्म छा आहे तव्हांखे इहो ॿुधाइणो आहे ऐं तव्हां असांखे इन सुवाल जो सही जवाबु तव्हां असांखे मैसेज ज़रिए ॿुधाए सघो था जेके दोस्त प्रोग्राम ॿुधनि पिया ऐं पंहिंजो रेडियो सेट हाणे हाणे ऑन कयो आहे या जेके दोस्त प्रोग्राम नओं ॿुधनि पिया उनखे का ख़बर कोन्हे का मैसेज करण जी त मैसेज करण जो तमामु आसान तरीक़ो आहे मोबाइल जे राइट ऑप्शन में वेंदो उते LRK लिखी स्पेस ॾेई पंहिंजो नालो पंहिंजे ॻोठ जो नालो लिखी करे ऐं सुवाल जो सही जवाबु मोकिलियो 888 ते तव्हां सेंड कंदव तव्हांजे सही जवाबु असां ताईं पहुची वेंदो ऐं जेकॾहिं दोस्त जेके फेसबुक ते प्रोग्राम ॿुधनि पिया GFM 88 जी जेका ID आहे असांजो GFM 88 जो पेज आहे तव्हां उन ते बि फेसबुक ते बि तव्हां पंहिंजो पंहिंजे सुवाल जो सही जवाबु मोकिले सघो था ऐं सुवाल जो सही जवाबु तव्हां असांजे मोबाइल नंबर ते बि कॉल करे तव्हां असांखे लिखाए सघो था असांजो नंबर आहे 0332-13228 जी हा असां 10 बजे मोबाइल खे ऑन कंदासीं पंहिंजे स्टूडियो में तव्हां मोबाइल नंबर ते बि तव्हां पंहिंजे सुवाल जो सही जवाबु लिखाए सघो था त बिल्कुलु असांजो नंबर तमामु आसान आहे 0332-13228 त असांजो सुवालु आहे ATM जो फुल फॉर्म छा आहे तव्हांखे इहो ॿुधाइणो आहे साईं मुंहिंजा ऐं तमामु आसान सुवालु आहे ऐं समुझा अव्हांखे यकीननि ख़बर हूंदी ऐं हिन वक़्तु पूरे मुल्क में असांजे प्यारे पाकिस्तान में ऐं असांजी सुहिणी सिंध में तव्हां ॾिसंदा हूंदो त आसमान ते बादल याने ककर छायल आहिनि ऐं हर तरफ़ झुड़ी झुड़ आहे ऐं किथे बरसाति वसे पई किथे कणकण आहे त किथे सफ़ा बरसाति कोन्हे का बरहाल किथे ॿुट ॿूसट गर्मी त किथे हवा लॻे पई बरहाल काफ़ी इलाइक़नि में असांजे इस्लामाबाद में बि बरसाति तमामु घणी हले पई ऐं ॿिनि ॾींहनि खां टिनि ॾींहनि खां असांजे थर जे इलाइक़े में बि बरसाति तमामु घणी आहे ज़िले मीरपुर ख़ासि में बि तमामु बरसाति घणी आहे अचण वञण जा रस्ता पंहिंजो अचण वञण लाइ उहे रस्ता कोन्हनि खे जिते माण्हू पंहिंजे ऑफिस में पंहिंजे ड्यूटी ते पहुची सघे या पंहिंजे कंहिं कारोबार में पहुची सघे बहरहाल अलाह सी माफ़ु कंदो जिते बरसाति जी ज़रूरत आहे अलाह खे पारत आहे त उते वसाए ऐं असां सभु दुआगू आहियूं पंहिंजे सिंधी माण्हुनि लाइ झांगड़नि लाइ त इन बरसाति में बि पंहिंजो ख़्यालु कयो पंहिंजे ॿारनि जो पंहिंजे माल मता जो पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ख़्यालु कयो त जीअं बरसाति में को नुक़सानु न थिए ऐं हलंदड़ बरसाति दौरान जॾहिं जेका असांजी ट्रैफिक हले पई सवारी हले पई उहो बि उनजो वधीक ख़्यालु रखनि छो त बरसाति में हलंदे हलंदे किथे रोड ते वण किरी पवंदा आहिनि किथे को अचानक रोड ते राति जे पहर में या ॾींहं पहर में को जानवर निकिरी पवंदो आहे को ढो ढगो अची वेंदो आहे नंढा ॿार रस्ते में किथे खेॾंदा आहिनि त ड्राइवर हज़रात खे बि इहा गुज़ारिश आहे त पंहिंजो ख़्यालु कनि हलंदड़ बरसाति में किथे हलंदड़ हवा में वण बि किरी पवंदा आहिनि त कोशिशि कयो ऐं बरसाति जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो आहे अव्हां जे नाम पिया कयूं

साईं मुंहिंजा असांजे समाज में के किरदार अहिड़ा त अमर बणिजी वेंदा आहिनि जंहिंजी शख़्सियत किरदार ऐं सलाहतनि जो चर्चो सालनि ऐं सदियुनि ताईं हर कंहिंजे चपनि ते पियो हूंदो आहे ऐं उन हवाले सां साईं मुंहिंजा गुलनि गुल जो इंसान सां तालुक़ु ॼमण खां वठी मरण ताईं आहे ऐं गुल नाव खणंदे ई ख़ूबसूरती ऐं ख़ुशबू जो अहसासु फुटणु लॻंदो आहे। ताज़ी तहक़ीक़ ज़मीन जे गोले ते लॻभॻि 3.5 लख अहिड़ा वण वलियूं ॿूटा या ॿूटियूं आहिनि जिन में गुल थींदा आहिनि। प्यार जे इज़हार लाइ अक्सर गुल जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ऐं घोट जे मोड़नि खां वठी कुंवार जे गजरनि ताईं ऐं गुलनि जो इस्तेमालु थींदो आहे। गुलाब जे गुल खे गुलनि जो सरदार बि चयो वेंदो आहे। हिकु गुल खे हासिलु करण लाइ न ॼाण त केतिरनि ई कंढनि सां मुंझणो पवंदो आहे। अव्हां खे ख़बर आहे त असांजे मुल्क पाकिस्तान में जेको गुल आहे क़ौमी गुल आहे उनखे गुल चमेली सॾियो वेंदो आहे ऐं जेको गुल चमेली जंहिंखे असां यास्मीन बि चयो वेंदो आहे। मूंखे असांखे पाण खे उन वक़्तु ॾुख थींदो आहे जॾहिं असां कंहिं माण्हू जे मथां गुल वर छटींदा आहियूं, पर गुल छटणु त सुठी ॻाल्हि आहे, पर जॾहिं गुल वरी हेठि पेरनि में किरंदा आहिनि त उन महिल असां सभिनी खे पाण खे ॾुखु थींदो आहे त इहे गुल केॾी महिनत सां फुटा ऐं इन्हनि गुलनि सां केॾो प्यारु कयोसीं ऐं हिन वक़्तु उहे अहिड़ा माण्हू जेके ॾिसंदा बि न आहिनि पर गुलनि खे लताड़ियूं हलिया वेंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो गुलनि जो उनखे क़दुरु थींदो ई कोन्हे को। पर पोइ हर ज़बान मां इहा ई ॻाल्हि हूंदी आहे त गुल हवा में अहिड़ी तरह पिया लॾनि, को हा पियो करे को न पियो करे।

0: It's
1: This लेकर तलब कीजिए.
2: आज़ाद कश्मीर के आम चूंडन में नवाज लीग मैदान मारे वही एक्वीन तकन मां 17 तकन जा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अची वया. नून लीग 13 पीपी चैन सीटन ते कामयाब. मुस्लिम लीग नून जा उम्मीदवार मुस्तफा बशीर अब्बासी चौधरी मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद हसन रजा मुरीद जावेद आमिर शाह शौकत शाह मोहम्मद यासीन अहमद रजा कादरी कामयाब. एले 15 ते कश्मीर वैली छते पीपीए जो अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट खड़ी कामयाब. आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो ख्वाजा मोहम्मद दिलावर 823 वोट खड़ी बे नंबर ते रहो. आजाद कश्मीर जे वक्ती सदर पीपी एमएनए ते हमलो पीपी सरकार मुश्ताक शाह कतल. पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मज़ामत. आजाद कश्मीर के वक्ती सदर चौधरी लतीफ अकबर ए पीपी एमएनए ते सलाहुद्दीन जुनेज ते हमलो थियो. बिलावल भुट्टो जरदारी पारा एल 31 में कत्ल थियल मुश्ताक शाह के वारसन से ताज़ियत इज़हार. बिलावल भुट्टो जरदारी चयो तो पहिरीं रियासत के सदर चौधरी लतीफ अकबर ते हमलो ए पीपी कारकुन की शहादत से नून लीग की नियत वाज़े थी वही है. पीपीए में ने सलाहुद्दीन के बाह में गोली हणी जख्मी कयो वयो. गोली ए ताकत से नून लीग आजाद कश्मीर के अवाम के हकन ते धाड़ो हणी रही है. नून लीग जो दांधली जरिए खटण अवाम मां रियासत तां विसा खत्म करे छडींदो. नून लीग चूंडू नथी खटी सके तो साजिशन ते लही आई है.

0: अवां खे घणो अॻिते वञिणो आहे। गुमराह न थियो वज़ीर आज़म जे सियासी सलाहकार राणा सनाला जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। राणा सनाला चयो आहे त मुश्ताक अहमद पीपीए जो कारकुन न हो। सदर चौधरी लतीफ़ अकबर सां ज़ाती मामले सबब मामूली जहिड़ो थियो। सलाहुद्दीन सिंध पुलिस जा अहलकार साण करे पोलिंग स्टेशन ते अंदरि घिड़ियो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज आई होंडा शोरूम मेहरापुर। नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी।

0: गुप्ता जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाए 0320180003।
1: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर।
2: 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 93855 69 93004 निस्कानी
3: 03013992836।
4: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है। सुन FM 94।

0: It's 10:15 a.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: Aashiq Honda Showroom Mehrapur. Atlas Honda Motorcycle Club Pur Etmat. Aimba Akhtiar 3S Dealer. Aashiq Honda Motors Mehrapur. Jite nai motorcycle ji sale. कंपनिया जे मुकरर कर रेट दे दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनिया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जैर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120
1: खुशखबरी लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल अब फिक्र छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट बार बार वेक्स और शेविंग से निजात नरम साफ और खूबसूरत जिल्द कम वक्त बेहतरीन नतायज अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94

साईं मुंहिंजा इंसान जॾहिं पंहिंजे ख़ूबसूरत खे वधाइण जी पहिरीं कोशिशि कई हुई त हुन वणनि जे पननि या गुलनि सां हार ठाहिण शुरू कया ऐं हुन मिटीअ जूं चूड़ियूं ठाहे सुकाए पंहिंजे हथनि में पाइण शुरू कयूं हुयूं। उन वक़्तु उहे पंहिंजे हथनि में पाइण शुरू कयूं हुयूं। उन वक़्तु उहे बेडोलियूं हूंदियूं हुयूं जेकी पोइ आहिस्ता आहिस्ता

आहे, असांजो सांगड़ जो इलाइक़ो आहे, असांजो मीरपुर ख़ासि जो इलाइक़ो आहे। उते तमामु वॾा चूड़ा बि बाहुनि में पया वेंदा आहिनि, जेके बाहुंटा बि चइबो आहे, चूड़ा बि चइबो आहे, ऐं उहो आम रवाज़ हूंदो आहे।

0: It's 9:30 AM. This
1: उम्मीद के दिए जलते हैं,
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकाद, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जो, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम और तरबियत के लिए आज ही मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजर स्कूल सिस्टम, 03000027234, निसार अहमद मेमन प्रिंसिपल मजर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
3: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
4: जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओ ग्लो, वाइट एज ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾिए अव्हां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ पूरत सान ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं रिज़ल्ट हासिल करण लाइ।

0: जो वदन जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वदन मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वदन उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
2: मेरान आयरन स्टोर हालानी होलसेल डिपो अ नेम टू बी ट्रस्टेड
3: सरिया गार्डर टीए एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बार या दस्तयाब आई
2: हाने यचो मेरान आयरन स्टोर नज बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
3: राबते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300-3204-372 आई 0242-460100
4: अस्सलाम वालेकुम अदा
5: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
4: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
5: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
4: न अदा
2: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो मो पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे
4: मुझे दुकान जी भेट हलंदी
5: हां अदा कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
4: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
2: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
5: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836
7: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

पंहिंजो अंदर अज़ख़ुदि सुकून ऐं राहत महसूसु कंदो। ऐं ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त इंसान जे दिलि में इंसानत वारो दर्दु हुअणु घुरिजे। इन ई जज़्बे तहत ई माण्हू इंसान ज़ात जी ख़िदमत करे सघंदो ऐं इंसान ज़ात जी ख़िदमत करण बि इबादत आहे, छो त हक़ीक़त आहे त माण्हू वसहारा पाड़े जा हक़ बि आहिनि ऐं पंहिंजनि जा हक़ बि आहिनि, त दोस्तनि जा हक़ बि आहिनि, यतीमनि मिसकिननि जा बि हक़ आहिनि ऐं उन जा हक़ अदा कंदो ऐं अहिड़ो मज़ो वठी ॾिसो ऐं अहिड़ो सौदो अलाह सां करे त ॾिसो त उन इंसानियत में केॾो मज़ो आहे।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में असां खां सवाल पुछियोसीं एटीएम जो फुल फॉर्म छा आहे, यानी एटीएम द शॉर्ट फॉर्म आहे, यानी उन फुल असुल नालो या सॼो नालो उनजो कहिड़ो आहे। त असांजे अॼोके सवाल जो सही जवाबु हो त ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जी हा, तमामु आसान सवाल हो जेको दोस्तनि ॿुधायो आहे। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आहे जंहिंमां असां बैंक मां वञी करे पैसा पाण कढंदा आहियूं, कंहिं बि चेक भरण जी ज़रूरत न पवंदी आहे, ऐं बैंक जे खुलण जो ऐं ऑफिस टाइम जो कोई बि पंहिंजो वक़्तु न हूंदो आहे। कहिड़े वक़्त बि 24 कलाकनि में असां मशीन मां एटीएम मशीन मां असां पैसा कढींदा आहियूं। त एटीएम मशीन जो फुल फॉर्म जेको आहे, सॼो नालो जेको आहे, ऑटोमेटिक टेलर मशीन आहे। त असांजे काफ़ी दोस्तनि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे। उन मां असांजो पहिरें नंबर ते, जी हा बिल्कुलु, असांजे पहिरें नंबर ते असां जेको दोस्त सही जवाबु ॾिनो आहे, अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां असांखे पहिरें नंबर ते सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे। उन सां गॾु आहे भुट्टो सोलंगी, नूर अहमद सोलंगी, ऐं बाद में जिन दोस्तनि असांखे सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे उन में मीरपुर ख़ासि खां ई ख़ालिक लाशारी आहे, ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलिक आहे, ऐं मीरपुर ख़ासि खां इक़बाल लाशारी आहे, ऐं आसिफ अली चाचड़ आहे, वासिफ अली बुगटी आहे लाड़काणे खां, ऐं ताज मोहम्मद ख़ासि केली आहे, हुमा ख़ासि केली मीरपुर ख़ासि खां, जंहिं सवाल जो सही जवाबु नाहे ॾिनो, ऐं मसूद जमाली सखर खां, हुन सां गॾु आहे फारूक अहमद, जावेद जमाली, फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां, ज़ोहेब कटबर लाड़काणे खां, सोहराब मंगरियो असांजो आहे ॻोठ सचेरिणो मंगरियो लॻे बकापुर खां, नूरसेन तुनियो बदीन खां, मोहम्मद ख़ान कुंभार, वफ़ा जमाल कुंभार मीरपुर ख़ासि खां, ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार आहे मीरपुर ख़ासि खां, क़ुर्बान ख़ासि केली झंडो मरी खां, उन बि चयो त मूंखे सवाल जवाबु कोन पियो अचे, ऐं हाफिज़ नईमुल्ला पनवाकिल खां, हबीब लाइ थेबो ॻोठ मोहम्मद तैयब ॻोठ खां, असद लाइ चांडियो मोहम्मद आलम चांडियो ॻोठ मीराणी चांडियुनि खां। दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जिन कोशिशि कई, जिन कोशिशि न कई त उनखे सवाल जो सही जवाबु न आयो, जिन कोशिशि कई त हुनखे सवाल जो सही जवाबु आयो। पर पहिरें नंबर ते असांजो भाउ अज़ीज़ पंहिंजो अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां सही जवाबु ॾिनो, दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ॻोठ मोलिण माशी लॻे वॾनि मरण खां ज़मीर हुसैन सोलंगी, मुख़्तार अली सोलंगी, ज़हीर अबास सोलंगी, नंढिड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी, ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर, शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर, ॻोठ अहमद खान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी, नंढिड़ो शाहज़ेब लाशारी, ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई, यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई, ॻोठ मोहम्मद क़ासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो, मोहसिन अकबर, अहसन अकबर, फहद अकबर, अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो, ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी, अकबर खान मक्सी, नारा स्टॉप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जुणे जो, मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जुणे जो, यार मोहम्मद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फ़ौजी इरशाद महेसर, एजाज़ अली कलोड़ो, डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो, माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई। त साईं मुंहिंजा दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। आख़िरी कलाम आहे दोगानो आहे ममताज़ मोलाई जो, गॾिजी पिया ॿुधूं, सभिनी जे नाम पिया कयूं।

यसमिन ममता समोले जी दो गाने ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पे पांजे बजानी ते हयाती रही तवां सा मुलाकात जरूर थिंदी तेसी ताई पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणी जो करींदा इजाज़त अलह निगाहबान।

0: अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त जानी नुक़सान न थियो चाहियां, तंहिं करे हमला रोके ॻाल्हियूं शुरू कयूं आहिनि। अॼु मंझंदि जो है ईरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू थी वेंदो। ॻाल्हियूं राब्ता फ्रेमवर्क तय थी रहियूं आहिनि। ईरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते न अचे हा त अहिड़ो हमिलो कयूं हा जेको ॿियों महाभारी जंग खां पोइ वॾो हमिलो हुजे हा। सऊदी अरब, मुतहदा अरब इमारात, कतर ऐं ईरान जी दरख़्वास्त ते हमला रोकिया। आबन हरमुस बाबति हिकु मुआदो मौजूदु आहे। हाणे एटमी हथियारनि जे ख़ात्मे बाबति बि मुआदो तय थी वेंदो। जंग जे ख़ात्मे लाइ मुआदो ई अॻिते वधण जो बहितरीन रस्तो आहे। हिन भेरे ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त तकरार वधीक शिदत इख़्तियार कंदो। बरतानवी ख़बरू इदारे मूजिबि तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में ॻाल्हियूं तमामु जल्द शुरू थियण जो इम्कान। ईरान, पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे इख़्तियारनि जो बि हिक ॿिए सां टेलीफोनिक राब्तनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची, सऊदी परॾेही वज़ीर ऐं ॿियनि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर विच में राब्ता थिया आहिनि। बेहड़ मां पुरसरार नमूने गुम थियल ॿिनि भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर। बिस्मिल्लाह कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवण आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। चकभर सां हथियारबंदनि जे खैरपुर वासीअ खां फुर जी कोशिश। हिकु जवाबदार सोगो ॻोठ नापर वटि चक जहान खान रोड ते पुलिस हिकु जवाबदार गाड़ो जतोई खे सोगो करे वरितो। फुर थियल मोटरसाइकिल बि हथ, संदसि साथी फरार।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो। इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर, नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमामु बहितर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर, राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300338569।
4: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
5: सरिया, गार्डर, टीयर, एंगल, चैनल पट्टी, लोही दरवाजा, सिल्वर जा चौंक, सीमेंट, रेती, क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
4: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे, हालाणी।
5: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 03003204372 ऐं 02424601000।
6: अस्सलाम वालेकुम अदा।
7: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
6: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
7: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई?
6: न अदा।
4: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
6: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
7: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलबु हर क़िस्म जी एडवरटाइज़िंग हलंदी। थी आए
6: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
4: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
7: रابطے लाए हाकिम अली जिस कहानी
8: 03013992836
9: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफ एम 94
10: तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट अच्छी लगती
11: मेरे बाबा ने मेरी बात पक्की कर दी है

0: It's 11:50 a.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, खरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

शाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को, शाहत से फतह करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम। यू आर ट्यूनिंग इन टू ट्रियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम सा दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार, सिंध की आवाज। हाउ यू, कैसे हैं आप? आई होप जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल, एक साउंड एकदम स्ट्रॉन्ग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद हैं और मेरा पूरा पूरा साथ देने के लिए पूरे पूरे तैयार हैं, पूरे पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। देखिए आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 टू 1 PM आपका मेरे साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा।

इसके अलावा वो लोग जो भी बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, वो लोग जो लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको कहेंगे विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेस आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज़ जिन जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादियों और पहाड़ों सरियाओं और मरगुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को, चाहने वालों को, मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबा।

0: It's 11:30 AM.
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद आईमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल

0: जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो। कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ते जिलाए आसिम हुसैन आराई 03073592120।
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA DHMS सिंध RHMP इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वहण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर दिन का शो
2: खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 03003385 69

0: के किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: हमारे दोस्त, प्यारे दोस्त सुन रहे हैं, हाफिज सावंत डेरू साहब, आयरलैंड साहब, और हमारा प्यारा दोस्त खालिद साहब भी सुन रहे हैं, और जो मतलब हमारे भाई है, दोस्त है, जो भी सुन रहे हैं, मुस्कान सरदर्द, और जो भी सुन रहे हैं, हम सबको मेरी तरफ से सलाम। और ये प्ले जरूर करना है क्योंकि आज मोहल्ला में इमामों का चालीसवां है, तो इसलिए मैंने आपको ये करना।
0: ओके जी, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। और ये रहा आपका गाना।

0: साथ साथ हम नेक्स्ट कॉलर भी लेते हैं और चेक करते हैं कि जो कॉलर कहाँ से. और हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आपसे पहले क्या चल लॉकडाउन आपसे बात कर रहा हूँ. आप सुनाए दादी, कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइएगा कि गाना सुनाएंगे?
1: गाना नहीं, एक मिनी नगमा है पाकिस्तान के हिसाब से, यह सुना रहा आपकी मेहरबानी होती.
0: ओके जी, सुना दें.
1: तू भी पाकिस्तान हो, माँ भी पाकिस्तान हो, ये सुना आपकी मेहरबानी होती. अल्लाह आपको सलामत रखे.
0: चले जी, मैं बिल्कुल सुनाती हूँ. और कुछ कहना है?
1: आपका शो जबरदस्त है, आपका यही सुनता हूँ.
0: चले जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. और इसी के साथ हम गाना प्ले कर रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है. एंड इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एटमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीया जे मुकरर कर रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीया जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 0307-3592120।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड PRP ट्रीटमेंट के साथ। बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे बाजू टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही रابطہ करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद खरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569। खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो। जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569।
2: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा, कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
3: अस्सलाम वालेकुम अदा।
4: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
3: अदा नौ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
4: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
3: न अदा?
5: यार आजी कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो GFM 94।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कौन और कहाँ से. जी हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं वकार जतोई.
0: वकार जतोई, गाना सुना दें. कॉल ड्रॉप हो गई वकार जतोई की. 03000113488. एक और कॉलर. हेलो. ओके हेलो.
2: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी. ओके, प्रोग्राम सुन रहे
2: हैं?
0: तो गाना सुनाएंगे?
2: जी बिल्कुल.
0: तो सुना दे. ओके, किसी को डेडिकेट करना है?
2: जी नहीं बिल्कुल.
0: ओके जी, थैंक यू. अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज. और इसी के साथ हम नेक्स्ट सॉन्ग प्ले करने जा रहे हैं, एंड आज का टंग टेस्टर क्या है वो हम आपको बताएंगे. एंड आज का जो टंग टेस्टर होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि

0: आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: इलेक्शन कमेटी सां गॾिजी हंगामो ऐं फायरिंग कई, जंहिंजे नतीजे में हिकु ॼणो मारिजी वियो। चौधरी लतीफ़ जे तक खे डिस्टर्ब करण लाइ हुननि पूरो ज़ोर लॻायो। सिंध पुलिस जी मुक़ररी जी बि कोशिश कई। आज़ाद कश्मीर जे आम चूंडनि जे ॿिए मरहले में बि नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो। 20 तकनि मां 13 ते नवाज़ लीग कामयाब। पीपल्स पार्टी रुगो 5 सीटूं हासिल करे सघी। मुज़फ़राबाद डिवीज़न जे 8 तकनि ऐं मुहाजरनि जे 12 सीटनि ते वोटिंग थी। ख़राब मौसम सबबि हिकु तक ते चूंड मुल्तवी कई वई। अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तस्दीक करे छॾी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। आबना हरमुज़ बाबति हिकु मुआहिदो मौजूदु आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआहिदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो।

0: अमेरिका ईरान जी गालिन खा पेरियो पाकिस्तान सऊदी अरब मुतहरिक सऊदी अरब जे परदे वजीर जो ईरानी हम मुनसिब अब्बासी इराक सा फोन ते राबतो खिते में जारी चिकतान के खात्मे लाए सफारती कोशिशन ते जोर भरियो जरियन मूजिब ईरानी परदे वजीर अब्बास इराकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सा भी गाल बोल कई है। मेहर मां पुरसरार नमूने गुम थे बिन भेनरों जो पतो न पो वारसन पारा अगवा जो शक जाहिर बिस्मिल्ला कॉलोनी मां वी वरन की लाइबा अरह वरन की रजिया बिरोही टिन डीन का पुरसरार नमूने गुम आन न्याणियों के वालिद जो चवण है तो पुलिस न्याणियों की गोल्हा में संजीदा ना न्याणियों गोल्हे परेशानी खत्म कई वे चक भरसा हथियारबंद के खैरपुर वासी का फुर की कोशिश एक जवाबदार सोगो गोठ नापर वट चक जहान खान रोड ते पुलिस एक जवाबदार गाड़ो जतोई के सोगो करे वरतो फुर थियल मोटरसाइकिल भी हथ संदस साथी फरार पुलिस चयो आहे त गिरफ्तार कयल जवाबदार का जांच जारी आहे।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।

0: मौजूद आहिनि। फौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस, हालाणी रोड, मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-338-5569।
3: अस्सलाम वालेकुम। अदा
4: वालेकुम अस्सलाम। अदा छो परेशान आई?
3: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
4: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
3: न? अदा
5: यार, आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो त एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली न थी चवे।
3: मुझे दुकान जी बेड हरंदी?
4: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
3: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94, नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर।
4: राबते लाए हाकिम अली जिस्कानी
6: 0301-399-2836।
5: आई मोहम्मद उमेर गोरी 0319-1550-724।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी एफएम 94।

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli glow har diya josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर अपना घर मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज़ GAFM 94।

0: लो जी, आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, ठीक है, ये कहेंगे. 03000131488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है. जी नेक्स्ट, नहीं सॉरी, फर्स्ट कॉलर इस सेगमेंट के. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद.
0: वालेकुम अस्सलाम.
1: कितने हसीन लोग थे कि जो मिलके एक बार कितने हसीन लोग थे जो कि मिलके एक बार अरे आंखों में जज्ब हो गए और दिल में समा गए. ये एहसास का रिश्ता है. बंदा नाचीज को अल्ताफ बलोच कहते हैं और जाग जानी का सलाम है, मोहब्बत कबूल हो.
0: वालेकुम अस्सलाम. जाग जानी अंकल कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह आपकी दुआओं के साथ परफेक्ट अल्लाह की जात है. आपकी दुआएं हैं कि ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया. ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया. ये धड़कनों में आपका कयाम कैसे हो गया. किताब इश्क ने जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी. किताब इश्क जिसने उम्र भर पढ़ी न थी नमाज इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया.
0: वाह,
1: ये चश्मे मोतबर थी जेरे आप कैसे आ गई. खलिस सी दिल में आप ही का नाम कैसे हो गया. खुदा तो खुद हसी है जो चाहता है हुस्न को. खुदा तो खुद हसी है जो चाहता है हुस्न को. तवाफ हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया. भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी तनाइयां फिर आज शाम गम का एहतमाम कैसे हो गया. और बशीर बदर कहता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो. न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए. अपने अल्ताफ बलोच जाग जानी का सुनने वालों को सलाम मोहब्बत और पंतर पाक आपको के साय में रहो जो मांगो आपको मिल जाए बेटा.
0: थैंक यू सो मच जाग जानी अंकल. अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत यूनिक और लेटेस्ट किस्म की पोइट्री लेकर आते हैं हमेशा. और जी 03000131488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जा रहा है. सो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो देखते हैं ये कौन अच्छा अच्छा कह पाता है. सो नेक्स्ट कॉलर. हेलो, ओके जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. तो 03000131388 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद मुझे कह के दिखा रहे हैं एक अदर टंग ट्विस्टर, ठीक है. टंग ट्विस्टर बोलेंगे और जब आप टंग ट्विस्टर बोलेंगे तो होगा ये कि जो अच्छा अच्छा बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को. हेलो,
2: अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
2: बताए कैसे.
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताओ कि टंग ट्विस्टर सुनाओ. बोलेंगी
2: कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल की बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए. कवल ने
0: कच्चे कद्दू के कबाब
2: कमाल बनाए.
0: कवल ने कच्चे कद्दू के
2: कबाब कमाल बनाए. ओके,
0: सांस फूल गया. जल्दी जल्दी आ रही थी. चलें, जबरदस्त जबरदस्त. अच्छा सरदर्द, कुछ और कहना है?
2: आप एक गाना प्ले करेंगे? मैं
0: गाना सुनना है. कौन सा?
2: दिले निजात.
0: दिले
2: देरे निजात.
0: दिले निजात
2: नहीं, देरे निजात.
0: सॉरी मैं समझ नहीं पा रही.
2: देरे निजात.
0: डेरे निजात
2: जी.
0: ओके जी, चले मैं इसको सर्च करती हूँ ये कौन सा.

0: जल्दी जल्दी आ रही थी, चलें जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सरदर्द कुछ और कहना है?
1: हाँ, आप एक गाना प्ले करेंगे? मैं
0: गाना सुनना है, कौन सा?
1: दिले निजात उसी।
0: दिले
1: देरे निजात,
0: दिले निजात,
1: नहीं देरे निजात,
0: सॉरी मैं समझ नहीं पा रही,
1: डेरे निजात,
0: डेरे निजात
1: जी।
0: ओके जी, चले मैं इसको सर्च करती हूँ ये कौन सा।

0: साल भी रिकी हो गई
1: जल्दी
0: थी।
1: जल्दी आ रही थी, चलें जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा सरदर्द कुछ और कहना है?
0: हाँ इसे आप एक गाना प्ले करेंगे? मैं
1: गाना सुनना है, कौन सा?
0: दिले निजात हो इसे,
1: दिले
0: देरे निजात,
1: दिले निजात,
0: नहीं देरे निजात,
1: सॉरी मैं समझ नहीं पा रही,
0: देरे निजात
1: डेरे निजात।
0: जी, और
1: ओके जी,
0: इसे
1: चले मैं इसको सर्च करती हूँ, ये कौन सा?
2: नहीं भाई नहीं सुना।
1: अच्छा मैं बताऊँ फिर बोलेंगे?
2: जी बताएं।
1: आपने कहना है कि कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए।
2: नहीं पहले लिख दो फिर बाद में सुनाऊंगी, पहले आपको मैंने बताया।
1: चलें ठीक है, और कुछ, और कुछ कहेंगे? ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ 03000113488 एक और कॉलर लेंगे। जी हेलो,
3: अस्सलामुअलैकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम, कौन कहाँ से?
3: बाजी वफा अब्दुल वहीद जतोई केटी शामिल हो।
1: वफा अब्दुल वही जदोई भाई, कैसे? ठीक ठाक परफेक्ट हैं।
3: जी शुक्र है शुक्र है। अले क्या नसीब है हमारा, दो दफा कॉल कट गई है, क्या करूं?
1: दो दफा कॉल कट गई है और देखिए फिर दोबारा लग भी गई है।
3: बिल्कुल बाजी, हम मेहनत करते हैं, हम शौक सा कॉल में लेते हैं, कॉल तो लगते है, बहरहाल नेटवर्क का हमारे पास दुश्मनी है।
1: कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चले अब कॉल भी लग गई है। मुझे बताएं कि या टंग ट्विस्टर सुनाए, बोलेंगे?
3: बिल्कुल हम सुना है, बाकी एक मेहरबानी करो दोबारा थोड़ा रिपीट करो तो हम सुनाऊं।
1: ओके जी मैं रिपीट कर देती हूँ, आप कहेंगे कि कवल ने कच्चे कद्दू की कबाब,
3: कवल है कच्चे के, कवल है कच्चे के, कवल है कच्चे के, बाजी हम रिक्वेस्ट करूं
1: कच्चे के नहीं।
3: जी जी
1: आपने कहना है कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए।
3: कवल कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल का बाजी है साझा, पर हमारे को कुछ मेहरबानी करो बस हमारे को छोड़ दे। हमारे पास, हमारे पास कुछ दोस्त भी आए,
1: छोड़ दिया आपको।
3: हमारे को कुछ दोस्त भी आए।
1: हाँ जी
3: हमारे डिमांड है, 14 अगस्त चल रहा है, तुम्हारे को तुम्हारे टीम को बुद्ध 14 अगस्त अब्दुल वहीद जतो ही पारो मुबारक हो गया। 14 अगस्त के हिसाब से हमारे को सॉन्ग सुनाओ। पाकिस्तानी हो गया, हमारे पास कुछ भाई जहीर मन जतो ही, मेरा भाटा आयाद मन जतो ही, वकार जतो ही, लारकान खंबा जो भी सुन रहा है, वफा अब्दुल वहीद जतो ही पारो सजे सतक सलाम सलमान मेमुना ठेरी कौ।
1: ओके जी अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। 03000113488

0: It's 12:30 p.m. This soundtrack is
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो। गुर्दन जो इन्फेक्शन, चेहरे जो रंग सांवरो, चेहरे जी खारिश, फट फुरड़ियूं, बारन में कद जो न वधण, मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण, उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो। राब्ते लाइ 0301-2196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569। जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां, हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 0300-002-7234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 0301-386-5453।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारिया दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे ई अचो मेहरान आयरन स्टोर, नज़्द बलोच पेट्रोल पंप, नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल, 0300-320-4372 ऐं 0242-460100।
5: अस्सलाम वालेकुम अदा।
6: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
5: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
6: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
5: न अदा।
3: यार अॼुकल्ह शहरनि तोड़े गोठनि में जीअं मेरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
5: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
6: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
5: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मेरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण, 0301-380-8347।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है, सुनते रहो जी FM 94।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू. तो कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं जो कि हम काफी देर से नहीं गए हैं. सो जी, हमें बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स रिसीव होते जा रहे हैं. नूर हुसैन तुनियो ने हमें मैसेज किया है और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम बदीन सिस्टर रुखसार, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. इसके अलावा ताहिर लोन, मोहम्मद ताहिर लोन ने हमें कमेंट किया है खैरपुर मीरत से. आशिक खास के लिए हमें सुन रहे हैं मोहम्मद ताहिर लोन, वंस अगेन थैंक यू सो मच. और कहते हैं ये जी मोहम्मद ताहिर लोन की जानिब से नूर हुसैन तुनियो, हालार, विशाल और खालिद जुनेजो को 14 अगस्त जश्न आज़ादी की दिल की गहराइयों से बहुत मुबारक हो. अभी दूर है, अभी मुबारकबाद फिर आप 14 अगस्त को दीजिएगा. अभी थोड़ी सी दूर है. हाँ, ये है कि अगस्त शुरू हो चुका है और आज़ादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि 14 अगस्त अभी दूर है. आज 3 अगस्त है, ठीक है. तो ये है और इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी जो कंटिन्यू था, दैट इज बोलो तो माने. अच्छा, साथ साथ मेरे सामने एक गाना आया और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छा सा गाना जो है मेरे सामने आए और मैं प्ले ना करूं. तो अच्छा सा गाना मेरे सामने आया है और मैंने कर दिया है प्ले.
1: प्लीज कम बैक, आई मिस यू.

0: सच।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GFM 94।

जी, वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार, आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है. और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू, जो कि आप कर भी रहे हैं. और आज का जो सेगमेंट रहा है जिसका नाम था बोलो तो माने, और बोलो तो माने में आज टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाया ही जी सरदर्द ने. हमेशा की तरह सरदर्द ने काफी अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया.

0: लास्ट लकी कॉलर भी लेंगे 03000113488 के ऊपर. और चेक करेंगे कि लास्ट लकी कॉलर कौन है. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम जानिमन.
0: वालेकुम अस्सलाम मिसेस अली, कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ. मेरी जान आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपकी आवाज को क्या हुआ है?
1: क्या हुआ है?
0: गला ठीक है आपका?
2: जी सारे
1: अब ठीक है.
0: जी अब ठीक है. मुझे बताइए गा के प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: हाँ जानिमन, पहले मैं सुन रही थी, थोड़ा बिजी थी. तो अभी लास्ट लिंक सुनी.
0: चलें जबरदस्त. अच्छा मुझे बताएं कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: जानिमन आज की अच्छी बात ये कि अगर किसी को कुछ दे नहीं सकती तो दुख भी नहीं देना चाहिए.
0: चलें जबरदस्त जबरदस्त.
1: अल्लाह पाक
0: जी आवाज़. ओके जी थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें. आपकी आवाज में डिस्टर्ब. जी जी जी बोले.
1: आई लव यू सो मच जानी मैम.
0: थैंक यू.
1: ओके
0: अल्लाह हाफिज. थैंक यू सो मच. और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. और जी लास्ट में हम गाना प्ले करेंगे अनुरल खालिद का और इसको हम सुनेंगे. और जाते जाते वही बात के ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. Live simple but think high. So this is me, RJ Rukhsar, signs out. Take care, goodbye, amani khuda, Allah.

अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरीं पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब मुतहरिक सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बास इराकचीअ सां फोन ते राब्तो। खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो वियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। भले वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर बलोरमा उमगा बाज़ार जी मुलाकात ॿिनि ॿारनि जे वाद वेझ में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक जो गॾियल हिकमत अमलीअ ते इतफ़ाक़, गिज़ायत, साफ़ पाणी, समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में ग़िज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾनि चैलेंजेस मां हिकु आहे। ॿारनि जी ग़िज़ायत बहितर बणाइण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम क़ाइमु कयो वेंदो। मेहड़ मां पुरसरार नमूने गुम थियल ॿिनि भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक। बिस्मिला कॉलोनी मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोई टिनि ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवणु आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। खैरपुर में कारे इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां टिनि ॿारनि जी माउ क़तल। मिल कॉलोनीअ में जवाबदार असद जांवरी साथियुनि सां गॾिजी पंहिंजी भेण टिनि ॿारनि जी माउ इरम ज़ाल अहमद अली जांवरीअ खे क़तल करे फरार थी वियो। औरत जे मुड़ुसु अहमद अली जांवरी चयो आहे त संदसि ज़ाल कारी न हुई। खेसि बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। मेहड़ मां मुबैना तौर अगवा ॼाणायल टिनि सहेलियुनि अगवा जी तरदीद करे छॾी। अदालत में मर्ज़ी मूजिबि हैदराबाद ऐं मीरपुर खां वञण जो बयानु ॾेई छॾियो। मुबैना तौर अगवा ॼाणायल शागिर्दियाणी रोशनी तेवणो 101 जे बयान में चयो आहे त मां फातिमा जांवरी ऐं तंज़ीला पंवर मेहड़ मां हैदराबाद विया हुआसीं, जितां पंहिंजे सहेलियुनि समेत दोस्त ॾांहुं मीरपुर खां वियासीं, जितां पुलिस हथु कयो। पुलिस इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयल जवाबदार ज़ैन मर जी सुञाणप न कराई। लालू राय किवे जो हथियारबंदनि जे घर ते कहा। भातियुनि ते तशदुद। 30 लख रुपियनि जो धाड़ो। ॻोठ बख़्शल माछीअ में हथियारबंदनि राति देर सां अवे सोलंगी जे घर ते कहा कई। लोहारिन घर भातियुनि खे जर्गमाल बणाए तशदुद करे हिकु कमरे में बंदि करे छॾियो। हथियारबंद घर में पयल 15 लख रोक रक़म, 7 तोला सोना ज़ेवर ऐं ॿियो क़ीमती सामान खणी फरार थी विया। सख़्त गर्मीअ में औरतूं ॿारा बंदि कमरे में दाहूं कंदा रहिया। पाड़े वारनि दर वञी खेर ॿाहिरि कढियो। लाड़काणे में कंबर मां 10 महीना अॻु पुलिस पारां मुबैना तौर गिरफ़्तारीअ बाद गुम कयल समाजी अॻुवाण सिकंदर गोपांग जी आज़ादीअ लाइ एहतजाज। वतन दोस्त मज़दूर फेडरेशन जे सॾ ते सिकंदर गोपांग जी आज़ादीअ लाइ एहतजाजी मुज़ाहिरो कयो वियो। अॻवाणनि मूजिबि कंबर में हारपो करण लाइ वयल समाजी अॻुवाण सिकंदर गोपांग खे 10 महीना अॻु पुलिस खंभे गुम कयो आहे। लगातार एहतजाज बावजूद खेसि आज़ाद न कयो पियो वञे। संदसि मासूम ॿार ऐं घर भाती परेशान आहिनि।

0: खैरपुर में एलपीजी गैस के अघ में वाद खिलाफ रक्षा ड्राइवर्स जो एहतजाज, रक्षा यूनियन के पोरे तन रक्षाओं बंद कर एहतजाजी मुजाहरो कयो। ड्राइवर्स जो चवण हो त खैरपुर में एलपीजी गैस 400 रुपयनि खां वधीक फी किलो विकरो थी रही आहे। ज़िले इंतिज़ामिया अथरादू अघ वधाईंदड़नि खिलाफ कार्रवाई करे। झंडूमरी वेझो न्यू माइनर शाह खे 50 फुट घारो, समय एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठ गोट सैद पना शाह वटां न्यू माइनर शाह खे 50 फुटनि जो घारो लॻो। ॻोठाणनि जो चवण आहे त घारे सभु समय एकड़नि ते बीठल फसल पाणी हेठि अची वियो आहे। आपाशी अमलो नाहे पहुतो।
1: असांजी मंज़िल लखनि करोड़नि विकुनि खां

0: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौपर एटमाट, अम्बा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट दे दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट, RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी। आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 0307359210।

0: कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बहरन लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी राबते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003
2: खुश खबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569

0: It's 1:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर और मेहरापुर की आवाज़, GAFM 94।

इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को बताया जाएगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल जो है वो किस तरह से रखते हैं। ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बेहतर बना सकते हैं बल्कि आप अपनी खूबसूरती की हिफाजत भी कर सकते हैं। और वो कैसे जनाब, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हम अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के चक्करों में ऐसे प्रोडक्ट के चंगुल में फंस जाते हैं जो कि भाई हम ना चाहते हुए भी इस्तेमाल कर पाते हैं, तो फिर ऐसा सीन बन जाता है कि आपकी स्किन जो है वो टोटली खराब हो जाती है। अगर आप भी ये वाला सीन नहीं चाहते अपनी जिंदगी के अंदर, आप चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा वाला सीन हो जाए कि हमारी जो स्किन है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाए और इसके अंदर कोई भी केमिकल भी ना हो, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो, और उसके साथ साथ अगर आप लोग व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को बहुत चीजें अच्छे से मालूम हो जाएंगे कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। ओके जी, तो यहाँ पर प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में आपका हमारे साथ रहता है ठीक अब से लेकर पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ। ये 2 घंटे आप लोगों के साथ हम बहुत ज्यादा वाली बातें करते हैं, बहुत ज्यादा वाली बातों में जो है वो आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र भी होता है। ओके जी, सो बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजी एंड योर डीजे सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जी, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत कैफा हालत उन कैसे है आपकी हालत, उम्मीदन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मार ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी, यानी कि लंच बनाने के दौरान सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपकी बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की स्माइल लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम आज एक बहुत ही प्यारे से कसीदे के साथ। कसीदा सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बता दें कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंटी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

ओके जी, क्या बात है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत सा कसीदा जो कि आप लोगों के समातों की नजर प्रोग्राम सुन रहे हैं. White Asian Tea Skin Beauty Show स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है White Asian Beauty Products and Tea Skin Beauty Products के तावन से. तो आप जनाब सुन रहे हैं हमारे साथ है. तो बताइए आप कौन कौन हमारे साथ मौजूद है, कहाँ कहाँ से सुन रहे हैं, और इसी के साथ साथ अपने होने का एहसास दिला दिया करें ताकि हमें पता चले कि आप लोग जिंदा हैं. वरना आप जानते ना, आप लोगों को मरा हुआ घोषित किया जाएगा. ओके जी, तो बिल्कुल अगर आप हमारे साथ मौजूद हैं तो आपको बताते हैं आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए टॉपिक क्या होने वाला है, यानी कि आज के प्रोग्राम का सवाल क्या होगा. तो आज मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, बल्कि ऐसा है कि आज आप लोगों को एक चैलेंज दिया जाएगा. और चैलेंज कैसा दिया जाएगा, क्योंकि आज आप लोग क्या करेंगे, आज आप लोग एक ऐसी बात बताएंगे जो कि सुनते ही मुझे बहुत ज्यादा हंसी आए. आज मेरा थोड़ा जो मूड है ना, वो ऐसा है कि मुझे शायद अच्छे खासे जोक पर भी हंसी नहीं आएगी. तो आज आपके लिए एक ऐसा चैलेंज है कि आप ऐसा कीजिए, ऐसी कोई बात बोलिए, ऐसा कुछ बोलिए कि मुझे हंसी आए. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस चैलेंज को शायद पूरा कर सकते, क्योंकि मैं वैसे भी छोटी छोटी बातों पे हंस देती हूँ. तो जल्दी से आप ऐसा कीजिए, टॉपिक को फॉलो कीजिए. हमारा प्रोग्राम सुन रहे हैं पहली मरतबा, रोजाना, या फिर आप घूमने वाले लिसनर से, यानी कि चोरी चोरी चुपके चुपके हमें सुनते हैं. तो जनाब ये जो इस तरह के काम इना नहीं किया करें, आप हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए और अपना सेल फोन उठाइए, मोबाइल के राइट ऑप्शन में जाइए, टाइप कीजिए LRK सिंगल स्पेस दीजिए, अपना नाम लिखिए, पूरा मैसेज लिखिए और इसे सेंड कीजिए 8881 पर. अगर आप मुझे फेसबुक पर सुनना चाहते हैं तो जी लाड़काना FM 88.8 हमारा पेज है जनाब. आप सर्च करते हैं तो आपको आराम से हमारा पेज मिल जाता है. आप जैसे ही वहां पर आएंगे तो आपको हमारे प्रोग्राम White Asian Tea Skin Beauty Show की लाइव पोस्ट मिल जाएगी, जिसे आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और शेयर कर देना है. ठीक है, तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, बताइए आप हमारे साथ मौजूद है, कहां कहां से ज्वाइन करते जा रहे हैं और कहां कहां पर White Asian Beauty Products एंड Tea Skin Beauty Products अवेलेबल हो चुके हैं. ओके जी, तो मैंने आज आप लोगों के लिए जो टॉपिक आप लोगों को दिया है वो कुछ ऐसा है कि आज आप एक ऐसी कोई बात बताएंगे, कुछ ऐसी चीज शेयर करेंगे जिसे सुनते ही मुझे हंसी आ जाए. हाँ जी, तो जल्दी जल्दी से हमारे प्रोग्राम का हिस्सा बनिए. इसी के साथ साथ आप White Asian Beauty Products हो या फिर Tea Skin Beauty Products हो, इन सब तमाम प्रोडक्ट्स को अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो उसके लिए आपके पास नंबर्स होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिनके ऊपर आप राबता कर सके, और राबता करेंगे तभी तो आपके करीबी जनरल स्टोर्स पर ये तमाम प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो जाएंगे. तो उसके लिए नंबर ज़रा आप नोट कीजिएगा जिसे आप लोगों ने डायल करना है. तो नंबर है जनाब 0332738 4309, 0332738 4309, और दूसरा नंबर है 0312502597.

0: गिर गया मौसम में जमीन पर रश्क हम रश्क आसमान थे अभी कल की बात है वाह वाह वाह वाह जिंदगी में उरूज हमेशा कायम नहीं रहता चंद हादसे चंद फैसले या चंद लम्हे इंसान को आसमान से जमीन पर ले आते हैं इसलिए ना अपनी कामयाबी पर गुरूर करें और ना किसी के जवाल पर हंसे क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अली रजा हमें सुन रहे हैं दुबई से अली रजा आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है और हमारे साथ हैं जनाब मोहम्मद बचल शमानी भाई आपको भी वेलकम कहा जाता है मीर तारिक बलोच हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई आपको वेलकम और अली अकबर बिरोही भाई हमारे साथ है सकरेन से आप हमारा शो सुन रहे थे वेरी वेरी नाइस शो थैंक यू वेरी मच मुमताज मलिक का गाना आपको जरूर सुनाया जाएगा आज के प्रोग्राम में और हैप्पी कहती है अस्सलाम वालेकुम माय फेवरेट आरजे सिद्रा क्या हाल है आपके खैर सा आ गई मेरी जान वेलकम टू शो जी आपको भी वेलकम कहते हैं हैप्पी गर्ल और मोहम्मद समान हमारे साथ है गुड आफ्टरनून एंड वेलकम टू यू माय स्वीट बुआ जी आपको भी वेलकम कहा जाता है माय प्यारे प्यारे भाई और अली मुर्तजा कहते हैं तूने मारी एंटियां और दिल में बची घंटियां टन टन टन होता है ओके जी अखलाक भाई हमें सुन रहे हैं अखलाक भाई हेलो और उसके अलावा वासा भाई हमें सुन रहे वासा भाई मैं ठीक हूँ आप बताएं कैसे एसन अरबानी कहती है अस्सलाम वालेकुम मौलाना अली सलाम अदर ओ माय फेवरेट आरजे मैडम मुस्कान जी कैसी हैं आप और तबीयत कैसी है सफा ठीक ठाक मजे में ताम बुदाए पांजो हाल अहवाल और अली मुर्तजा कहते हैं हमने ताने बाने ताने सुन लिए बारिश के बाद जो हफ्स और गर्मी तो बर्फ वाले कूल कूल गाने सुनाओ जी मैं कूल कूल गाने सुनाने की फुल वाली कोशिश करूंगी तो गाने हम सुनेंगे मतलब कूल कूल से क्या मुराद किस तरह के गाने होने चाहिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए जरा वो हमारा साबुन कभी कभी स्लो हो जाता है और नसरुल्लाह सुमरो हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम बाजी तू खुशा बाजी तो खुशा तू बुदाय खुशा और दर्द दिल आ चुकी है वालेकुम अस्सलाम चंदा जानी बिल्कुल ठीक ठाक है आप बताएं कैसी है कहती आईएस आई एम जिंदा माशाल्लाह माशाल्लाह नसरुल्लाह भाई कहते हैं हाँ माना तो के असा खिलायो न कड़ी गाल कयो जिका मतलब लगे तो हा बाबा है गाल ते खिली सकते थो और हजार भाई हमारे साथ मौजूद है वालेकुम अस्सलाम हजार भाई छाला खुश आयो साजिद हुसैन सुमरो हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम कहते हैं कैसी आप हमें सुन रहे हैं डीआईजी ऑफिस लाड़काना से ओके जी वेलकम कहा जाता है ऐसी आप जरा पोस्ट को लाइक और शेयर करते जाइए अपने होने का एहसास दिलाते जाइए और इसके अलावा नंबर के ऊपर राबता करते जाइए क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं जब तक आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल नहीं कराएंगे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को तो आपके लिए थोड़ा सा ये मुश्किल हो जाएगा कि भाई आप कहां से जाकर परचेज करेंगे तो ऐसा वाला सीन बनाइए अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए और वहां से जाकर बस आनी परचेज कीजिए क्योंकि जब आप लगाएंगे व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स या फिर जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स तो आपकी जिंदगी बड़ी मजेदार हो जाएगी क्योंकि आपको स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ना तो जल्दी जल्दी से खूबसूरती का ख्याल रखिए और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते रहिए टाइम हो जाता है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक आप ब्रेक लेते उसके बाद जल्दी वापसी आप लोगों के पास तो कहीं नहीं जाइएगा यही रहिएगा मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूं सो स्टे ट्यून्ड स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग व्हाइटिश एंड जी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड जी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए
1: खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम पी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुम्मे छंछर आचर ए

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नजलो निचो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना

कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहराब पर, 03003385569। जी स्किन डल ऐं बेरोनक लगे थी, हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो। पेश आहे वाइट एज ब्यूटी क्रीम, अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश, सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग। इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडिएंट लुक, रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट। हाणे थियो खूबसूरत थियण वधीक आसान। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, खूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं। बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एज ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप। वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गी सां गॾु। वाइट एश ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन जो राज। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान। जिंदगी गुजारियो एतमाद सां, कुरान खे समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।

0: मुझे लाए
1: अच्छा खासा फर्क पड़ता नहीं है. तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई इन झमेलों में मत पड़ना है और आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि भाई लाइट वेटेड भी हो और आप लोगों की स्किन के ऊपर फायदा भी छोड़ जाए, तो बिल्कुल आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है. और अगर एक्नी की बात छिड़ ही चुकी है तो यहाँ पर डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए मौजूद है. और डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब ये भाई मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया है. तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्नी ट्यूब आप लगाएंगे तो क्या आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल जी आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे. और ना सिर्फ आपके चेहरे के दाने खत्म होंगे बल्कि आपके चेहरे पर जो ये जिदी निशानात होते हैं, रिंकल्स होते हैं, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कितना भी पुराना कोई भी निशान जिदी क्यों ना हो, वो रिमूव हो जाएगा जब आप डॉक्टर पिंपल एंट्री एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे. ये भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, तो गर्मियों के सीजन में वैसे ही आपके चेहरे पर एक्नीज आना स्टार्ट हो जाते हैं. तो अगर आप भी डॉक्टर पिंपल एंट्री एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हो, यकीन जाने इतना शानदार ये ट्यूब है ना, पर्सनली मैं भी खुद भी लगा चुकी हूँ और मुझे जब भी एक्नी हो जाता है तो बस मैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाती हूँ, वो ऐसे गायब हो जाता है. और एक्नी तो क्या, एक्नी का निशान भी गायब हो जाता है. तो यहाँ पर आप भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का यूज कर सकते हैं. लगाने में इतना प्यारा है, इतना ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा जब आप लगाते ही, तो ऐसा कूल कूल सा माहौल बन जाता है. और एक मजे की बात, लगाएंगे किस तरह तो आपको लगाने के तरीकेकार भी समझाती हूँ जरा. डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को आप 2 मरतबा इस्तेमाल करेंगे, सुबह को लगाएंगे और रात को लगाएंगे. लगाने से पहले अपना फेस वॉश अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, आपके हाथ अच्छे से क्लीन होने चाहिए. उसके बाद जहां जहां पर एक्नी है, जहां जहां निशान है, जिस जिस चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं, वहां वहां पर आपने डॉट डॉट की सूरत में इस्तेमाल करना है. ठीक है, पूरे फेस पर नहीं लगाना, बस जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां लगाना है. ओके, हो गया. और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये ट्यूब है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है. उसके अलावा यहाँ पर व्हाइटिश लवली क्रीम की जानिब अगर हम आते हैं, तो व्हाइटिश लवली क्रीम की बात मैं जरा आप लोगों को बताऊं, तो व्हाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस फार्मूला है, फेयरनेस क्रीम है, और इसे नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह बिल्कुल भी नहीं तैयार किया गया, क्योंकि इसके अंदर विटामिंस का भरपूर फायदा तो आपको मिल रहा है, लेकिन साथ साथ आप लोगों को सनस्क्रीन का फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि अलग से आप लोगों को सनस्क्रीन नहीं लेनी पड़ेगी, बस आप लोगों ने व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर देना है और आप चुटकियों में रेडी शेडी हो जाएंगे. अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनके ऊपर फेस पर मेकअप नहीं लगा पाते, या फिर गर्मियों के सीजन में वैसे आप खुद भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं, तो बस आपने व्हाइटिश लवली क्रीम का थोड़ा सा मिकदार अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है. जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे की स्किन जो है वो चमकना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ग्लो मिल जाएगा और आपकी स्किन की प्रोटेक्शन भी होती रहेगी. तो जल्दी जल्दी से कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब कर लीजिए जो कि आपको लगता है कि ये हमारी स्किन के मुताबिक तैयार किए गए. लेकिन जब आप कोई भी व्हाइटिश के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें ना, तो व्हाइटिश लवली क्रीम को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आप सब लोगों की बेसिक नीड के मुताबिक है. क्योंकि अगर आपके पास कोई फेयरनेस क्रीम नहीं होती है ना, तो उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो व्हाइटिश लवली क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिए, आपके पॉकेट के अंदर, आपके पर्स के अंदर व्हाइटिश लवली क्रीम होनी ही चाहिए. तो जरूर से इस्तेमाल कीजिए. लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप अपना फेस वॉश करके इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी क्रीम अपनी हथेली पर लगाकर उसे अपने चेहरे पर लगा लेंगे, तो आपके चेहरे पर जो है ना, आप देखेंगे कि भाई कितना जल्दी अच्छा वाला ग्लो आ चुका है. तो बिल्कुल जी ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, व्हाइटिश बस नाम लेकर तलब कीजिएगा. और इसके अलावा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और डायल करते रहिए 0332738439. ये नंबर बंद मिले तो दूसरा नंबर है 0312502597. ये दोनों नंबर्स आप अपने पास सेव कर लें. आपको जो है ना, इन नंबर्स के ऊपर रابطہ करना होगा, कॉल या फिर मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाईजान आप कहां पर मौजूद हैं और कहां कहां पर व्हाइटिश

ओके जी, मैसेजेस हैं आप लोगों के, और मैसेजेस में हमारे साथ हजार भाई कहते हैं कि मैं जिन बनकर आता हूँ, आपको हंसाता हूँ, फिर वैसे आप जिन से डरती हो या नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद नहीं डरूंगी, तो जिन बनकर आएंगी तो मैं हंसूंगी कैसे, मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये रियल वाला जिन है या फिर हथ सा ठहल जिन आए क्योंकि मैंने इतनी सारी हॉरर मूवीज देख रखी है ना, मुझे सारा पता है कि एक जिन को रेडी किया जाएगा तो कैसे रेडी किया जाएगा। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर असां तांखे खिलायूं तो कोई असां के छा मिलंदो, तव्हांखे ॿुधायां छॾे बस समझी तो वो होंगे मुझे क्यों अपनी बात पर हंसी आ रही है, आप हंसाए ना मुझे। अच्छा दर्द दिल कहती है साफ साफ बोलने के चक्कर में मेरी जिंदगी से आधे लोग साफ हो गए हैं, यही थी दुआ बाबा, बिल्कुल सही था। जो सनाला फ्लोपोटो हमारे साथ मौजूद है, वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भाई जन, आप बताएं कैसे हैं। हैप्पी कहती है प्यारा शो, प्यारी आवाज और प्यारी मेरी आरजे सिद्रा मुस्कान, थैंक यू हैप्पी गर्ल। वासब भाई कहती है अदी सिडो असा भी तमाम वांग ड्यूटी जा पक्का आयो पहुंची वयासी, वाह वाह वाह वाह। उदास लड़की आ चुकी है उदासी के साथ साथ, और क्या कहती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम, बोले इस्लाम अदर, कैसी हो प्यारी आरजे एंड वेलकम मी, आपको वेलकम कहा जाता है स्वीटी। ओके जी इरफान हुसैन मरी बलूच हमारे साथ है, कहते गुड शो थैंक यू। निदड़ी कहती है मैं ताने खाती नहीं मारती हूँ लोगों को, बाकी मुझे सॉन्ग सुनाओ बिलाल सईद का न्यू दूरियां सॉन्ग। ओके आई विल ट्राई।

की बात हो रही है। हाँ जी, इश्टिंग कौन कौन पीता है? वैसे एक बात बताऊं, मेरा उस पर क्रश आ ही जाता, बस आने ही वाला था, लेकिन बात ये थी कि मैंने उसे इश्टिंग पीते हुए देख लिया। हाय, सत्यानाश हो गया। बिल्कुल, आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम, व्हाइटिश लवली क्रीम, या फिर डॉक्टर पिंपल ट्यूब, सोप लगा रहे हैं या फिर फेस वॉश लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बताइए। मोहम्मद जमान कहते हैं, बुआ आज स्टिकर सैंड कर दिए, इतने सारे में ब्रश करती हूँ भाई, दांत क्या देखेंगे आप मेरे। एग्जैक्टली, दम वाले पानी की बात हो रही थी। सॉरी सॉरी, मैं भूल गई थी।

ओके जी, पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए. मोहम्मद मीरन जखरानी भाई, जेकब अब्बासी, मरसद माजूदे, खुश आमदी. ये हमारे साथ जी गुलाम फरीद बलोच. वालेकुम अस्सलाम, आप कैसी हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से. मैं ये अली भाई के लिए शायरी लिख रहा हूँ. वो दोस्त मेरा थोड़ा नाराज हो गया है. हम किसी से रिश्ता तोड़कर तमाशा नहीं बनाते, बस वहाँ खामोशी अख्तियार करते हैं जहाँ अगला अपनी औकात दिखा दे. गुलाम फरीद जागीरानी हमारे साथ है. आए हाय, अली भाई को ये राजी कर रहे थे या और ज्यादा नाराज कर रहे थे? क्या बात है. अच्छा, मोतिया से थानी भाई, वालेकुम अस्सलाम. मोहम्मद जमान भाई, मुझे मिस कॉल के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये आपकी ट्रिक जरा फेल हो गई.

Whitish Beauty products आपके लिए अवेलेबल है जनाब. Whitish Beauty products आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, Whitish Beauty soap लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जनाब. रेगुलर आप कोई भी soap लगाना चाहते हैं तो आपके लिए Whitish Beauty soap बहुत ही बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाला है, क्योंकि Whitish का जो soap है ना, ये बहुत ही कमाल का soap है जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है. ये तमाम चीजें मिलकर तैयार हुआ है जनाब Whitish Beauty soap. अगर आप भी Whitish Beauty soap लगाना चाहते हैं तो आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई लगाएंगे जनाब. और उसके अलावा अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं तो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपके लिए Whitish Beauty फेस वॉश भी अवेलेबल है. Whitish का जो फेस वॉश है ना, ये विटामिन सी से तैयार किया गया है, इसके अंदर विटामिन सी भी और थोड़ी थोड़ी विटामिन ई भी है, समझ रहे हैं. और ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे आए हाय चस्सी करा दी, आज भी बिल्लो जिंदा है, बिल्लो ने कहां मरना है. और उसके अलावा Whitish फेस वॉश लगाती है बिल्लो, इसलिए बिल्लो आज भी जवान है. तो आप भी Whitish फेस वॉश यूज कीजिए. और Whitish फेस वॉश के साथ आपको मिल रही है Whitish ब्यूटी क्रीम, जो कि नाइट क्रीम है. नाइट क्रीम में लगाना पसंद करते हैं तो Whitish ब्यूटी क्रीम का ट्राई जरूर करके देखिएगा. इसी के साथ साथ

क्या बात है, प्रोग्राम सुन रहे हैं व्हाइट एशियन डे स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए, खूबसूरती का चस्का आपको भी लगेगा ना, तब आप जानेंगे कि व्हाइट एशियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई कितने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। वासु भाई कहते हैं आता भी वो आप खुद ही था और जाता भी वो खुद ही था, मगर वासा एक बात अजीब थी उसमें, नुकसान हुआ तो सारा हमारा हुआ। आईली दारू डो खुद होगा समझा। और यहाँ पर किशोर भाई कहते सलाम अदा स्मार्ट हाजिर माटा के चौथा भली करे आया। और ऐसे माशाल्लाह आज कराची जी हाँ भाई पावर आ पावर सुठी गाल है ना माशाल्लाह सदे जेको आ ना शहर जो तमा समझो था। अच्छा किशोर भाई कहते अदा हाने हाने हाने मो बुधो कसम बुधा न मु तो कदे एडो कोई एड ना ठायो मुश्ताक अहमद कुंभर कहते सिद्रा बहन अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप, आपका प्रोग्राम नाई से है, मैं मुश्ताक अहमद कराची से आपको सुन रहा हूँ। मुश्ताक भाई आपको वेलकम कहते। आदिल कहते कल में दिल में अच्छा वो पता नहीं था ना, दिल में बातें करते वो मैं कैसे सुनूंगी। आबिद ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं नौशेरो फिरोज से हेलो। मुश्ताक अहमद कहते हैं क्या ये ट्यूब कराची में दस्तियाब है और कहाँ मिलता है कराची में, आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिएगा आपको मिल जाएगा, अगर नहीं मिलता तो जो नंबर आपको मैं प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ ना उन नंबर्स को आपने जरा नोट कर लेना है, और नंबर्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर डायल करके अवेलेबल करा सकते हैं। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा, आप ट्राई करके देख सकते हैं और हर स्किन के मुताबिक ही जनाब, कोई टेंशन की बात ही नहीं। ओके जी मोहम्मद जमान की थी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आरजी तुम्हें एक टैलेंट दिखाऊं, बच्चों से चिप्स कैसे छीनकर खाई जाती हैं, तुम भी खाओ फ्रेंड को भी खिलाओ मजे की जिंदगी जियो। ये तो मैं बहुत पहले से कर रही आ रही हूँ, तो ये टैलेंट मेरे अंडर कूट के भरा हुआ है, आप कोई और बात बताए। नसुला भाई कहते हैं हा साई यहाँ जी स्किन ब्यूटी क्रीम माँ मैंने इस्तेमाल कई वो असर आ माँ एक चिकर गलती में वारन में लगाया और मुझे सजा वार अच्छा थी वया। बिल्कुल भाई तांगे ख्याल करो ने तांगे सिर्फ पाने फेस ते लगा लिया है, दाढ़ी मुछन खां भी दूर रखो फेस से लगाने वाली चीज आए एकदम कंध ते भी थोड़ी लगाए जो कंध भी तांजो थवई ना त मुंह जी टुकरी अच्छी हो जे कंध वाली कार हो जे ये ना क्यों बाबा।

0: फ्रॉम वाई स्टेशन टी स्किन ब्यूटी शो. आप सुनेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक. टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते, आपने कहीं नहीं जाना, यही मौजूद रहिएगा. मैं जरा यूं जा कर यूं वापस आती हूँ. सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग. वाई स्टेशन टी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाई स्टेशन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड टी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स.
1: It's 2 p.m. This time check is brought to you by
2: Fakiri Analgesic Cream. Dard, sojan, viram fauri khatam. Aaj hi kareebi store se na.
3: GAFM Network par KTN News.
4: बिन सीटन ते बीपी कामयाब थी आहे. धांधली जो पिटको कंदड़ 70 सीटन मां रुगो 3 सीटू खटी सघिया आहिनि. मुज़फ़्फ़राबाद जे पीपल्स पार्टी जे माण्हू इलेक्शन कमेटी सां गॾिजी हंगामो ऐं फायरिंग कई, जंहिं जे नतीजे में हिकु ॼणो मारिजी वियो. चौधरी लतीफ़ जे तक खे डिस्टर्ब करण लाइ हुननि पूरो ज़ोर लॻायो. सिंध पुलिस जी मुक़ररी जी बि कोशिश कई वई. आज़ाद कश्मीर जे आम चूंडनि जे ॿिए मरहले में बि नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो. 20 तकनि मां 14 ते नवाज़ लीग कामयाब. पीपल्स पार्टी रुगो 5 सीटूं हासिल करे सघी. मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जे 8 तकनि ऐं मुहाजरनि जे 12 सीटनि ते वॉटिंग थी. ख़राब मौसम सबबि 1 तक ते चूंड मुलतवी कई वई. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां आज़ाद कश्मीर जे चूंड में नवाज़ लीग जी कामयाबीअ ते अॻवाननि ऐं कारकुननि खे वाधायूं. शहबाज शरीफ चयो त कश्मीरी नवाज़ लीग जे पॉलिसियुनि ते एतमाद कंदो आहे. अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तस्दीक करे छॾी. डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं. आपना हरमुस बाबति हिकु मुआदो मौजूदु आहे. ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआदो बि हासिल कयो वेंदो. माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो.
3: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर. आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज.
5: माशाला फौजी पाइप फैक्ट्री नर्स गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मैरापुर. असां वटि जॻह जूं ॾियारियूं, जॻह जा पावा ऐं पाइप. 1.5, 4, 6, 9 ऐं 12 इंच में प्लेन ऐं कॉलम में मौजूद आहिनि. फौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी. राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793.
6: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर. होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो. इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर. नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे. सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे. होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद. इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर. फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी. होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी. इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर. राब्ते जे लाइ 0320-18-00-003.
7: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ. अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है. गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे. सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार. फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर. नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है. आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं. पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर. 0300-338-5569.
8: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड.
9: सरिया,
8: गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौक सीमेंट रेती क्रेश आई रंग वगैरह बाजार का बारिया दस्तियाब आई
9: हाँ यचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालानी
8: राब्ते लाए प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 03003204372
10: अस्सलाम वालेकुम अदा
11: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
10: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
11: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
10: न अदा
9: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
10: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
11: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
10: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
9: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नजगर डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
11: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
12: 03013992836

0: It's 2:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
3: अपना शहर, अपना घर, मेहरापुर, और मेहरापुर की आवाज GAFM 94।

प्रोडक्ट यूज किया जाए और उससे कंफ्यूजन के अंदर रहते हुए आप लोग ये सिलेक्ट ही नहीं कर पाते कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, तो इन तमाम चीजों को कैसे फेस किया जाए, किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाए। आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो स्किन है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, निशानात आपके चेहरे पर आ जाते हैं और आप अपनी उम्र से बहुत बड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर ऐसा वाला सीन आपके साथ हो चुका है या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा वाला सीन हमारे साथ ना हो भाई, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इंतखाब कर लेना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को जो जो बातें मैं बताऊंगी ना वो इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो आप भागते हुए जाइए और परचेज करके आइए, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम, इसे ऐसे तरीके से तैयार किया गया है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ इसे डॉक्टर्स की फुल निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको विटामिन ई बीड्स मिलेंगे, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन, अल्फा आर्बुटीन, कोजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है। और ऐड करने का फायदा जो आपको मिलेगा वो ये कि आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी, आपके चेहरे पर जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से ही आपको मिल जाएगा। तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है। बिल्कुल जनाब, दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, जो जिल्द की जिल्द को ना नमी फराम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाती है। और उसके अलावा अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जिल्द की जो बेरोनगी है वो भी कम हो जाती है और चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है। डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खसूसी अज़ा जो आपकी जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते हैं, रोजाना इस्तेमाल से आपकी जिल्द जो है वो कुदरती निखार आना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी खूबसूरती में इजाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो चाहे मर्द हसरातीन चाहे आप खवातीन, हर कोई चाहिए आप लोगों को कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें। बिल्कुल जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, तो ये भी चीज जरा याद रखिए। और डी स्किन फेस वॉश की जाने पाते हैं तो डी स्किन फेस वॉश भी भाई कमाल का प्रोडक्ट है, ये भी किसी से कम नहीं है। और डी स्किन फेस वॉश जो है ना इसे तैयार किया गया है, इसके अंदर एड है जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम, और हाइलोरोनिक एसिड सीरम की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए इस तरह जरूरी होता है कि जब आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करेंगे जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, तो ये सीरम आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, स्किन को क्लीन बनाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है। तो ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई भी साबुन लगाते हैं, कोई फेस वॉश लगाते हैं जो आपकी स्किन को जरा जो है ना वो ऐसा रूखा सूखा बना देता है, बहुत सारी खुश्की आपके चेहरे पर आ जाती है, तो जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो इस्तेमाल करने के बाद फौरन बाद ही मॉइस्चराइजिंग का आपको एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डी स्किन फेस वॉश आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, जैसे भी कोई फेस वॉश यूज करते हैं वैसे ही करेंगे, दिन में 2-3 मरतबा लगा लीजिएगा। रात को फेस वॉश बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो वो इसके बिल्कुल मत किया करें, रात को फेस वॉश करके अच्छे से उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए। बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, आप ट्राई करके देखिए, आपकी खूबसूरती आपको मिल जाएगी और आप ना सिर्फ खूबसूरत हो जाएंगे बल्कि आपको ये एहसास भी होगा कि भाई वाकई आपके पास अब अच्छे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं। तो मार्केट जाइए तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए जिसमें आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश भी शामिल हो जाता है। और नाम लेने की सूरत में आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 0332738403 09 0332738403 09 और दूसरा नंबर है 0312502597 0312502597।

प्रोग्राम में मैंने टॉपिक आप लोगों को ऐसा समझ लें कि एक चैलेंज दिया है कि आपने कोई ऐसी मुझे बात बतानी है जो बात सुनकर मुझे हंसी आ जाए। आज मेरा जरा हंसने वाला मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप कोई ऐसी बात करें जैसे सुनकर और देखकर मुझे हंसी आ जाए। समझ रहे हैं?

रूबी जी, बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है जो कि अली सफर की आवाज में है। अली सफर ही है ना? हाँ जी। ओके जी, एहसन अली बुक्टी भाई हमारे साथ हैं, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और निदली कहते हैं। टॉपिक तो देखो तुम्हें और हंसाओ, जरा सी बात पर हंसती हो तुम, रुको बताती हूँ। मैं आज फुल कंट्रोल करने वाले मूड में हूँ। अच्छा किशोर भाई कहते असांजी हाजिरी तुम्हारे चेहरे ते स्माइल वठी ईंदी आहे। जाई बुधा और उस पे तेरा और उस पे तेरा मुस्कुराना मर जाऊंगा ओ जाने जाना मर जाऊंगा। अच्छा अच्छा था जो बुधता यो मुके हजार ते खुलियो करे रे, हजार खुलो न थी तो बाबा खुलो थी तो मिंट खत्म थी वे, इन ला असा खुलो न कराइंदा।

नहीं नहीं आज आपको हंसाना इतना मुश्किल हो गया है जितना गूंगे को शादी के लिए हाँ बुलवाना है। इतना भी मुश्किल नहीं है। अली मुर्तजा कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना और ऊपर से सड़ियल को तो बड़ा ही मुश्किल। माँ सड़ियल आया माँ तो स्वीट आया वो अलग बात है आप हंसा नहीं पा रहे। अच्छा लुबी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम सिडू जानी में भी आ गई तमांजे शो में खुश आयो नी सिडू माँ भी खुश आया वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह हमेशा खुश रहो। कहती मिस यू सिडू जानी निधि एंड जिया को भी मिस यू। चले नी दोनों को मिस यू हो गया बिल्कुल जी खबी अतवारो सही समझो सुमरो बा क्या? अच्छा मूसा कोरी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वासा भाई कहते माने यहाँ गाला अदि सिद्रा की खिलाड़ू आ होशियार थी अदि माँ होशियारी आया तां पांजी कयो

ना बाबा ना बाबा एक्टिंग ऐसा कौन पहना है। अकलक भाई कहते हैं ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मेरे अंदाज़ होश हो ना खबर हो, अच्छी बात है, ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। मोहम्मद जमान बहुत शुक्रिया जी। दर्द दिल कहती है गली गली में पंखे हो हर शहर में, रात जुगनू सितारे रंग खुशबू नजारे, नहीं ऐसा मैं नहीं बोल सकती, सॉरी माजरत। हाँ असा वा थी वह असा हाँ खिचको न कहसी।

0: रमजान भाई हमारे साथ मौजूद है। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक मजे में।
1: रंग खुशबू नजारे, प्यार के हो इशारे और तुम साथ।
0: निदड़ी कहती है कि टॉपिक कोकिला ने बोला राशि को,
1: सुना सुना
0: गोपी कहाँ है?

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन, मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन्ड एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम, 03000027234। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, 03013865453।
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर, एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चौक पर एतमाद, अइमा अख्तियार 3S डीलर, आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर, जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल, कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब है। सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर, सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी है। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। आशिक होंडा मोटर्स ते पहेंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए, जिन्हें में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे जैर निगरानी, आशिक होंडा मोटर्स, एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर, राप्ती जिलाए आसिम हुसैन आराई, 03073592120।
3: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम, इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
4: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटली कबीर रोड मेरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन MA।

0: वठनी पवंदी मायरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: अस्सलाम वालेकुम अदा
2: वालेकुम अस्सलाम अदा छो परेशान आई
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
1: न अदा
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर एफएम 94 ही हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
3: ऑफिस जी मेरापुर एफएम 94 नर्द गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर
2: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
4: 03013992836
5: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

साह न वने वाला खिलां दी खिलां बस ॾिसो त मुंहिंजे खिलण जी कहिड़ी तव्हांखे परवाह आहे. माशाल्लाह माशाल्लाह सदको वञा. अलाह साईं ख़ुशि रखेव. ओ हेॾो सारो ख़ुशि रखेव. अच्छा हुन खां अलावा हिते तव्हांजा पैनल ते मैसेज आया त पैनल जी तरफ़ अचूं था. हैप्पी गर्ल हमारे साथ कहती है अस्सलाम वालेकुम आरजे सिडोजानी. अॼु मां बि अची वयमि बहुत दिनों के बाद. चलें जी आपको वेलकम एंड ख़ुश आमदीद कहा जाता है. हैप्पी गर्ल अंबर हमारे साथ है फ्रॉम लाड़कना. कहती अदे सिडो मुझे याद करती है या नहीं भुला दिया होगा ना. 3-5 साल के बाद शामिल हुई हूँ शो में. अदी आप हंसती हैं तो मुझे आप बहुत पसंद आती हैं. हंसा करें. जी जी मैं बहुत हंसूंगी ठीक है. अच्छा अंबर बिल्कुल आप हमें याद है. इतना टाइम आप कहाँ गुम हो गई थी बताएं तो जरा. और ये हमारे साथ है हैप्पी गर्ल. ओके जी आपको वेलकम एंड खुश आमदीद कहा जाता है. प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ है फ्रॉम सरदार अली असगर रिंद. कह रहे सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी. प्लीज आज अली सफर का कोई भी खूबसूरत सा गाना लगाएगा. बिल्कुल जी अली सफर का गाना आपको सुना लिया आपने एंजॉय करा होगा. मीरपुर खास अब्दुल्ला महर कहती है सलाम अलैकुम बाजी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है वाह साईं वाह. ये तब वही मानू जगह व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया. सो तव्हां बि वाइट एज ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कयो जेको मुनासिब लॻे जेको सूट करे उहो तव्हां लॻायो बाबा जे तव्हां बि ख़ूबसूरत थियो. अच्छा अंबर फ्रॉम लाड़काना कहती है कि अदी सिडो में 3 साल के बाद शामिल हुई हूँ और आप मुझे भूल तो नहीं गई है ना. मेरी शादी हो गई है. ओके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह खुश रहे. और रतो देरों से रेहान खान हमारे साथ. फयाज उर्स अहमद कहते हैं बाजी क्या हाल है आपके खुश हैं. कोई भी मजाहिया सॉन्ग सुनाइएगा जैसे बताइएगा. उन खां अलावा हैप्पी गर्ल कहती सिडो जानी ठीक है आप शो हमेशा की तरह आपका बेस्ट जा रहा है. थैंक यू. ये हमारे साथ है अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा कहिड़ा हाल है तव्हांजा. फौजी पठान खान खोसो हमारे साथ है. मैडम असांखे कोई भी गानो ॿुधराए जो. शाहबान अली खोसो भी तव्हां सां गॾु मौजूद आहे. सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू. फुलजी स्टेशन खां फौजी पठान खान खोसो वॾेरी सिदरा मुस्कान असांखे फौजिया सुमरो ॿुधराए जो. हाज़िर प्यारा भाउ तव्हांजी फरमाइश लाहिण जी कोशिश कयूं था. और हमारे साथ है मक़सूद मल्हा कहते मेहरापुर से आदाब सिदरा जवाब है असां जो पंहिंजो अॼु मूड ख़राब आहे असांखे त खिला पहिरियां. मां ज़िंदगी में पहिरियों दफ़ो तव्हांखे चवां त मूंखे खिलायो ॾिसो करदी ना छोटी बात. चलो कोई बात नहीं कोई बात नहीं तव्हांखे खिलाईंदासीं बाबा. मुंहिंजो मूड कहिड़ो बि हूंदो आहे न मां फील ई न आहे कराइण ॾींदी तव्हांखे त अॼु मुंहिंजो मूड सही आहे या ख़राब आहे. उन खां अलावा जेको आहे साजिद अली जमाली ही नवाब शाह से कहते सॉन्ग प्ले करे मुमताज मलय हाज़िर हले तो मुमताज मलय थोड़ो बस सबर कजो. चाचा खालिद हमारे साथ कहते एक तकलीफ सॉन्ग की है. जी बिल्कुल चाचा तव्हांजो गानो हलायूं था. थैंक यू सो मच तव्हां सां गॾु आहियो. मुमताज मलय ते ईंदो पर मूं सम्झो पहिरियां निगत नाज़ खे अचणु घुरिजे. सही आहे.

हुआ सही बात. बिल्कुल जी, आप इस्तेमाल करेंगे डी स्किन ब्यूटी क्रीम और डी स्किन फेस वॉश, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए. अच्छा अदा अच्छा था चो अदा चाहे तो अदा मुखे तुझे खिले छो वणंदी आहे खबर आहे न ॿुधाए जो त सही छो वणंदी आहे इहो इन जे पोयां कहिड़ो रीज़न आहे. अच्छा मोहसिन अली हमें सुन रही है लाड़काना से, मोहसिन अली बिरोही मीरो खान चौक लाड़काना से आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है. अली मुर्तजा कहते हैं अनमेच्योर लोगों को हंसाना इजी है, मेच्योर और प्रैक्टिकल लोगों को ऐसी बातें करके खुद हंसी का सही बात है वैसे. अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं तू नथी खिले तो चलो ठीक है आसान खेलो बिल्कुल तहां खेलो तहां खेलो. आदिल कहते हैं कि जो गुम हुए वो जमाने तलाश करता हूँ, मैं वापसी के बहाने तलाश करता हूँ. अच्छा चाचा खालिद आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून बेटा सिडोल, आई एम हियर. आपने पूछा कि कोई ऐसी बात जिस पर आपको हंसी आए तो वो आप आरजे हैं, आप हंस के दिखाए ना हम दुखी लोगों के लबों पर हंसी आई. ये टॉपिक आंसर बिल्कुल बिल्कुल चाचा तमाम जड़न माण्हुनि जे लाइ त हमेशह मां खिलंदी आहियां, जीअं तव्हांखे एहसास न थिए त बाबा दुनिया में केॾा ग़म आहिनि. खैर दुख ऐं सुख हर कंहिंजे ज़िंदगी में हूंदा आहिनि, दुख ऐं सुख यानी की ॿई चीज़ूं आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगी में लाज़मी हूंदियूं. ईअं बि न आहे त ज़िंदगी में या दुनिया सॼी में को अहिड़ो माण्हू हूंदो जेको सिर्फ़ हैप्पी हूंदो या को अहिड़ो माण्हू हूंदो जेको सिर्फ़ जंहिंजे लाइफ में दुख हूंदा. दुख ऐं सुख ॿिन्ही ॿई जेके हूंदा आहिनि न तव्हांजी ज़िंदगी में मौजूदु हूंदा आहिनि, पर इहा ॻाल्हि हूंदी आहे त तव्हां वधीक तरजीह कंहिंखे ॾियो था, तव्हां ॾुखनि खे तरजीह ॾियो था या तव्हां सुखनि खे. छो त जेके माण्हू ॾुखनि खे वधीक वैल्यू ॾींदा त हू हमेशह सैड ई रहंदा, बाक़ी जेके खिलण वारा माण्हू हूंदा जेके चवंदा बाबा छा आहे ज़िंदगी त पई हलंदी पर अचो त ज़िंदगी खे इंजॉय कयूं, असां जहिड़ा माण्हू उहे पया खिलंदा रहंदा आहिनि. सो खिलंदा कयो बाबा, ऐं खिलंदा जेके माण्हू उहे त ॾाढा सुहिणा हूंदा आहिनि. सो तव्हां बि अगरि सुहिणा थियणु चाहियो था खिलण सां गॾोगॾु तव्हांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमालु बि करिणो पवंदो, ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां नथा इस्तेमालु करे सघो त तव्हां वटि डी स्किन जो फेस वॉश मौजूदु आहे, ऐं डी स्किन फेस वॉश लॻाइण खां फौरन बाद तव्हांखे अहसासु थींदो त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश एॾो सुहिणो आहे, एॾो भलो आहे, एॾो ज़बरदस्त आहे, त हाणे असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻाइण घुरिजे. सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो. डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि नाइट क्रीम आहे त हुनखे तव्हां राति जे टाइम लॻाए सघो था, बाक़ी डी स्किन जो फेस वॉश उहो त बाबा तव्हांजी जंहिं महिल दिलि चवे तव्हां तंहिं महिल लॻायो, तव्हांजी शइ आहे.

ओके ओके, बहुत खूबसूरत गाना हमने सुना. एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि मुमताज मलाई की आवाज में होने वाला है. मुमताज मलाई के गाने की आप बहुत से लोग फरमाइश कर रहे थे, तो हमने फाइनली ये वाला गाना लगा लिया है जो कि हम इंजॉय करेंगे. अदा टेम आया था टेम.

ओके जी, पोस्ट के लाइक ऐं शेयर कंदा हलो, ठीकु आहे? तव्हां जे तरफ़ खां मोहबत हूंदी आहे. अखलाक भाई कहते खिलंदा त कुतर कुतर कंदा. मां असां वॾा खूनी माण्हू आहियो, अहिली एॾी वॾी धमकी ॾेई छॾी, हाणे त मूंखे ज़ोरी बि खिलणो पवंदो. थैंक यू सो मच, थैंक यू. चाचा कहते हज़ार खुलियो. हा हा, हज़ार भाई खे चऊं था असांखे हज़ार खुलो करे ॾींदो. उन खां अलावा अली मुर्तज़ा खे हिते माण्हू स्पॉन्सर्ड करे करे अमीर थी विया, ईअं न माना थोरो थोरो साड़ थी वियो न. अलाह जो शुक्र आहे बाबा. निदड़ी कहती है कि ऐसी बात है तो सुनो. एडो वडो कमेंट कहती है कि मेरी माँ साथ जहरा मेरी भाभी को बोलना चाह रही थी, तुम्हारी मोबाइल मुझे पसंद नहीं, बट उसने भाभी को बोला कि मुझे तुम्हारी ओ तेरी. ये तो भाई साहब कुछ ज्यादा हो गया. अच्छा अली अकबर भाई, आप ममताज मलाइका का गाना सुनना चाहते थे, तो ये ममताज मलाइका का गाना चल रहा है.

मतलब ये गाना मैं सुन तो रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हे तीर जेको आ सोयो इन्हें जो मुंह केदा है

बिल्कुल मां भी हाणे समझी वियमि इहो निगत के थो चवे. सही सही सही सही मां हाणे सोचां पई इहो जेको टाइम मां चुप करे वेठमि इहो मां सोचां पई. ओके सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां लॻायो था कोन इहो ॿुधाइजो. ऐं डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि तव्हां पाण नथा लॻायो न त पोइ डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां कंहिंखे गिफ्ट करे सघो था. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम तव्हां कंहिंखे गिफ्ट करण ते तव्हांजी दिलि चवे थी इहो मूंखे ॿुधाइजो. छो त कुझु प्रिय प्यारा असांजी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि जंहिंजो ख़ूबसूरत थियण असांखे ॾाढी ख़ुशी ॾींदो आहे. अगरि तव्हां बि चाहियो त बाबा तव्हांजा जेके प्रिय प्यारा आहिनि उहे ख़ूबसूरत ॾेखारजनि त उन्हनि जे लाइ तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम परचेस करे सघो था. हू बि ख़ुशि थी वेंदा ऐं तव्हां बि ख़ुशि थी वेंदा. तव्हां ईअं ख़ुशि थी वेंदा छो त हू ख़ूबसूरत थींदा त तव्हांखे ज़ाहिर सी ॻाल्हि आहे ख़ुशी थींदी. ऐं हू वरी कुझु ईअं थींदा त हुननि खे इहो महसूस थींदो त बाबा असांजी परवाह करण वारो अॼु ॾींहं ताईं कोई आहे. ईअं थींदो आहे असां कॾहिं कॾहिं महसूस थींदो आहे त असांजी ज़िंदगी में माण्हू त खोड़ सारा आहिनि पर असांजी परवाह शायदि कंहिंखे कोन्हे का. सो माण्हू जेके बि तव्हांजा प्यारा आहिनि जेके तव्हांजी ज़िंदगी में थोरी वैल्यू रखनि था उन्हनि खे महसूस कराईंदा कयो त येस यू आर इम्पोर्टेंट. सो तव्हां बि डी स्किन ब्यूटी क्रीम पंहिंजे प्यारनि खे तोहफ़ो ॾियो. ऐं डी स्किन जो फेस वॉश त वाह वाह वाह ॾाढो भलो अथव. ॿई चीज़ूं ॾियो त ॾाढा भली ॾाढी भली ॻाल्हि आहे. अगरि हिकु चीज़ बि ॾियणु चाहियो था त या त फेस वॉश ॾियो या त ब्यूटी क्रीम. सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आहे ऐं डी स्किन जो फेस वॉश आहे लॻायो बाबा तव्हां बि सुहिणा थियो तव्हांजो बि हक़ आहे. हैप्पी गर्ल थैंक यू सो मच आपका बहुत शुक्रिया. तन्हा मोहम्मद हनीफ खान डहाणी हमारे साथ ही थैंक यू. और थरी मीरवा से मोहम्मद इब्राहिम खास के लिए अदी सिद्रा थैंक यू प्यारे भाई. आज तो भाई आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आए ना क्या बात है. बहुत शुक्रिया आप लोगों का देखकर दिल ही गार्डन गार्डन थी वेंदो है. अली मोहम्मद हमारे साथ नाजो दे बहुत शुक्रिया आपका. एसन कहते ब्रेक में खिली अचे थी ना बाबा एड़ी भी का गाल को निका. और इनका अलावा सोनाला फुलपोटो हमारे साथ नाजो दे आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आया उसके लिए बहुत शुक्रिया. आदिल कहते सिद्रा न बाबा कंहिंजी टोक न कजे अला साईं ॾोह ॾींदो आहे इन करे असां न कंदा आहियूं बाबा न तोबा तोबा. और कहते ये सॉन्ग प्ले करे गानो तव्हांजो पंज बजे वारे प्रोग्राम ॿुधूं था ठीकु आहे. अख़्तियार अली सिंधी साहब हमारे साथ मौजूद आहिनि. अवां सलाम ॾिना आहिनि रिज़वान साहब खे. सो थैंक यू सो मच. ओके ओके अब्दुल गफार भाई आपका बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ हैं. और ये हमारे साथ हैं एक मिनट में देख लू कोई नया बंदा तो नहीं हमारे साथ. हाँ जी काबले सुकून हमारे साथ हैं. काबले सुकून वालेकुम अस्सलाम डियर सिद्रा. आई एम अलीशा सखर से आप हमें सुन रही हैं क्या बात है. आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं बहुत शुक्रिया. हाँ नसल्ला भाई पुरानी परंपरा को भी पूरा करना चाहिए.

0: अच्छा इहो मूंखे रीज़न ख़बर पइजी वई त जॾहिं मां खिलंदी आहियां त तव्हांखे मां छो वणंदी आहियां. हर समय सही चङो थियो कंहिंजी यादि त अची वई. अच्छा रमज़ान भाई थैंक यू आप हमारे हिसाब से. चाचा खालिद कहते डी स्किन ब्यूटी क्रीम वो यूज कई वाह सही वाह चाचो तो चिमके दू. ये दुखन वारो मिड़े थोड़ो ड्रामो हो. एपिसोड खत्म थी चुको है. मुलाकात मुझी पंजी बजे वाले प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन करो ठीक है. सो ही सिलसिलो इत खत्म क्यों था वरी पंजी बजे मिलूं था. सो पांजो इलाही सारो ख्याल रखो. उन अलावा जे जे मानू असा के बुधन पया नी सो उन सभी के बाबा चवंदी त तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम हुजे या वाई टी सभु प्रोडक्ट हुजनि इहे सभु तव्हां इस्तेमालु कयो. अॼु तव्हांजा इलाही सारा कॉमेंट हुया सो थैंक यू सो मच. ओ हेॾो थैंक यू. ओ हेॾो छत खां बि वॾो सफ़ा वॾो आसमान जेॾो. सो पंहिंजो इलाही सारो ख़्यालु रखिजो. वाई टी ब्यूटी प्रोडक्ट बि इस्तेमालु कयो ऐं डी स्किन जा प्रोडक्ट बि इस्तेमालु कयो. जेको प्रोडक्ट तव्हांखे वणे थो बसि वठी अचो ऐं इस्तेमालु कयो. न मिलण जी सूरत में पंहिंजे क़रीबी जनरल स्टोर ते भॼंदा वञिजो ऐं उतां वठी अचो सही आहे. ऐं नथा मिलनि त पोइ तव्हांखे जेको नंबर ॿुधायो हुन नंबर ते राबितो कजो. सो मोकिलाणी नाहे बाबू सिलसिला में सा सलामत अल्लाह हाफिज़ बाय बाय लव यू ऑल एंड टेक केयर.
1: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज.
2: आज़ाद कश्मीर जे आम चूंडनि जे ॿिए मरहले में बि नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो. वीह तकनि मां 14 ते नवाज़ लीग कामयाब. पीपल्स पार्टी रुगो 5 सीटूं हासिल करे सघी. मुज़फ़राबाद डिवीज़न जे 8 तकनि ऐं मुहाजरनि जे 12 सीटनि ते वोटिंग थी. ख़राब मौसम सबब हिक तक ते चूंड मुलतवी कई वई. वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ पारां आज़ाद कश्मीर जे चूंड में नवाज़ लीग जी कामयाबीअ ते अॻवाणनि ऐं कारकुननि खे वाधायूं. शहबाज शरीफ चयो त कश्मीरनि नवाज़ लीग जे पॉलिसियुनि ते एतमाद कयो आहे. अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तस्दीक करे छॾी. डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं. आबना हरमुज़ बाबति हिकु मुआहिदो मौजूद आहे. ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआहिदो बि हासिल कयो वेंदो. माण्हू मारण नथो चाहियां. ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो. अमेरिका सां हिन वक़्त का बि ॻाल्हि ॿोल नथी रही आहे. उमान साहब न हरमुज़ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि. छिकताण में घटिताई लाइ नवां साल्स साम्हूं नाहिन आया. ईरान ऐं अमेरिका विच में पाकिस्तान साल्स तौर किरदार अदा करे रहियो आहे. कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे. चीन छिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे. ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूद आहिनि. फ़िलहाल कंहिं बि वफ़द जी मेज़बानी करण या कंहिं जो महिमान थियण जो इरादो नाहे. उमान साहब न हरमुज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि. अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरीं पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब मुतहरिक. सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बास इराकचे सां फोन ते राब्तो. ख़िते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो. ज़रियनि मूजिबि ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकचे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे. वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर बलोरमा उमगा बाज़ार जी मुलाक़ात. मेर वारनि जे वाद वेज में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक ते गॾियल हिकमत अमले ते इतफ़ाक़. गिज़ायत साफ़ पाणी समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो. वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में ग़िज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾनि चैलेंजनि मां हिकु आहे. ॿारनि जी ग़िज़ायत बहितर बणण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम क़ाइमु कयो वेंदो. وفاقی گھرو وزیر محسن نقوی جی وزیر اعظم شہباز شریف سان لاہور میں ملاقات ملکی سیاسی اور سیکورٹی صورتحال تے گال بول ذریعن موجب گھرو وزیر محسن نقوی وزیر اعظم شہباز شریف سان ماڈل ٹاؤن میں گزرل نیے ملاقات کئی ہوئی ملاقات دوران ملکی سیاسی سیکورٹی صورتحال تے گالیوں کیوں ہوئیوں پنجاب کے شہر راول پنڈی میں برسات تباہی مچائے چڈی پانی گھرن میں داخل روڈن تے بے ٹرین کا چین فٹن تائیں پانی بیٹھل شہری سخت پریشان
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز

0: मौजूद आहिन फौजी बाहरन लाए खुसूसी रियायत होंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएम जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वने थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राबते जे लाए 0320180003
2: खुशखबरी अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ अब फिकर छोड़िए आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार फेशियल रेजुविनेशन साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर नोट खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं पता रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नजद रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300338569

0: It's 3:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385 69।

0: मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जी कामयाब इलाज कयो वने तो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी खारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वने तो राबते लाए 0301-9196-851।
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज। एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: मेरा फैन।
1: वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अस्सलाम वालेकुम अदा।
3: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
2: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशवरी कराई थई
2: न अदा?
4: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो, मो पंजो दुकान खोल

0: नवाज लीग आजाद कश्मीर में हुकूमत ठाहिण लाइ सादी अक्सरियत हासिल करण जी दावा करे छॾी। पीपल्स पार्टी ते मुज़फ़्फ़राबाद में धांधली ऐं हंगामो करण जा इल्ज़ाम। वफ़ाक़ी वज़ीर अमीर मक़ाम सां गॾु प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त आज़ाद कश्मीर में चूंडूं शफ़ाफ़ माहौल में थियूं आहिनि। आज़ाद कश्मीर जे 45 सीटनि मां 23 ते नवाज़ लीग कामयाबी माणी आहे। गुज़िरियल ॾींहं थियल चूंडनि में बि 14 सीटूं नवाज़ लीग खटियूं आहिनि। मुहाजरनि जे 12 सीटनि मां बि 10 सीटूं नवाज़ लीग खटियूं। ॿिन सीटनि ते पीपी कामयाब थी आहे। धांधलीअ जो पिटको कंदड़ 7 सीटनि मां रुगो 3 सीटूं खटे सघिया आहिनि। मुज़फ़्फ़राबाद में पीपल्स पार्टीअ जे माण्हुनि एक्शन कमेटीअ सां गॾिजी हंगामो ऐं फायरिंग कई, जंहिं जे नतीजे में हिकु ॼणो मारिजी वियो। चौधरी लतीफ़ जे तक खे डिस्टर्ब करण लाइ हुननि पूरो ज़ोर लॻायो। सिंध पुलिस जी मुक़ररी जी बि कोशिश कई। आज़ाद कश्मीर जे आम चूंडनि जे ॿिए मरहले में बि नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो। 20 तकनि मां 14 ते नवाज़ लीग कामयाब। पीपल्स पार्टी रुगो 5 सीटूं हासिल करे सघी। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जे 8 तकनि ऐं मुहाजरनि जे 12 सीटनि ते वोटिंग थी। ख़राब मौसम सबबि 1 तक ते चूंड मुल्तवी कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पारां आज़ाद कश्मीर जे चूंड में नवाज़ लीग जी कामयाबीअ ते अॻवाणनि ऐं कारकुननि खे वाधायूं। शहबाज शरीफ चयो त कश्मीरनि नवाज़ लीग जे पॉलिसियुनि ते इतमाद कयो आहे। अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तसदीक करे छॾी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। आबना हरमुस बाबति हिकु मुआदो मौजूद आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो। अमेरिका सां हिन वक़्त का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। ओमान साहब न हरमुज ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। छिकताण में घटिताई लाइ नवां साल साम्हूं नाहिन आया। ईरान ऐं अमेरिका विच में पाकिस्तान साल्स तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन छिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूद आहिनि। फ़िलहाल कंहिं बि वफ़द जी मेज़बानी करण या कंहिं जो महिमान थियण जो इरादो नाहे। ओमान साहब न हरमुज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि। अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरीं पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब मुतहरिक। सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बास इराकी सां फोन ते राब्तो। ख़िते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर बलोरमा उमगा बाज़ार जी मुलाक़ात। मेरवारनि जे वाद वेझ में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक ते गॾियल हिकमत अमले ते इतफ़ाक़। गिज़ायत साफ़ पाणी समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में ग़िज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾनि चैलेंजनि मां हिकु आहे। ॿारनि जी ग़िज़ायत बहितर बणण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम क़ाइम कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां लाहौर में मुलाक़ात। मुल्की सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ज़रियनि मूजिबि घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मॉडल टाउन में गुज़िरियल ॾींहुं मुलाक़ात कई हुई। मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं। पंजाब जे शहर रावलपिंडीअ में बरसाति तबाही मचाए छॾी। पाणी घरनि में दाख़िल, रोडनि ते बि 3 खां 4 फुटनि ताईं पाणी बीठल, शहरी सख़्त परेशान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जोधपुर एतमाद ऐं बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोज ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोज ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वनी थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोज हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 03201800003।
3: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 03003385 69।

0: It's 4:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Diya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटरी कबीर रोड मेहरापुर कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ए सोम

आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल चोपर एतमाद अइमा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज्ड जैपनी स्टेचिंग मशीन जे जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन जरिए कई वन्य थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नस्त रेलवे लाइन मेहरापुर राप्ति जिलाई आसिम हुसैन आराई 03073592120

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीट्स और जदीद माइक्रो बीट्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो छा कजे।
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुझे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां दा, कारोबारी इश्तिहारात आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अमन मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है सुनते रहो GFM 94

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केडीएन न्यूज।
1: ये बात कह रहा हूँ और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ-ओ-हरास फैल गया।
2: नवाज लीग जी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने जी दावा, पीपल्स पार्टी पाबंदी मड़ियल तंजीम से गड हंगामा करण जो इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो ता आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थियो आहन। आजाद कश्मीर जे 45 सीटन मां 23 ते नवाज लीग कामयाबी माणी आहे। गुजरे लीह थियल चूंडन में बे 14 सीटू नवाज लीग खटियो आहन। महाजरन के 12 सीटन में भी 10 सीटू नवाज लीग खटियों, बिन सीटन ते पीपल्स पार्टी कामयाब थी है। दांधली जो पिटको कंदड़ 7 सीटन में रुगो 3 सीटू खटे सघ्या आहिन। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के मानन पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी से गड़जी हंगामो ए फायरिंग कई। चौधरी लतीफ के तक के भी डिस्टर्ब करण लाए उन्होंने पूरा जोर लगाया। हमले की दावा कंदड़न मेडिकल भी न करायो आहे, रुगो मुक्का देखारण के हमलो चयो वयो।
3: फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक्तदार पे आए और उसी की रवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़कर जो है वो उन्होंने कार्रवाइयां की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा।
2: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण नून लीग के पंजाब में वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करार दे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमण चयो तो पंजाब ए वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इक्तदार माणियो आहे, अञा भी नवाज लीग माजी मां सिखण लाइ तैयार न आहे। नवाज लीग आजाद कश्मीर में दांधली कई, कश्मीरन के वोट ते धाड़ो हयो वयो। आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 ईस्वी वाली रवायत के वरजायो वयो आहे। वफाकी वजीरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बे तकबुर ते बदल हुई है।

0: आज़ाद कश्मीर जी आम चूंडुनि जे ॿिए मरहले में बि नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो। 20 तकनि मां 14 ते नवाज़ लीग कामयाब। पीपल्स पार्टी रुगो 5 सीटूं हासिल करे सघी। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जे 8 तकनि ऐं मुहाजरनि जे 12 सीटनि ते वोटिंग थी। ख़राब मौसम सबबि 1 तक ते चूंड मुलतवी कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां आज़ाद कश्मीर जी चूंड में नवाज़ लीग जी कामयाबी ते अॻवाणनि ऐं कारकुननि खे वाधायूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त कश्मीरनि नवाज़ लीग जी पॉलिसियुनि ते एतमाद कयो आहे। अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप तस्दीक करे छॾी। डोनाल्ड ट्रंप चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। आबनाए हुरमज़ बाबति हिकु मुआदो मौजूदु आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारणु नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सानु थींदो। अमरीका सां हिन वक़्तु का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। ओमान सां आबनाए हुरमज़ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। चिकताण में घटिताई लाइ नवां सालिस साम्हूं न आहिनि आया। ईरान ऐं अमरीका विच में पाकिस्तान ट्रैकड़ी तौरु किरदारु अदा करे रहियो आहे। कतर में ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन चिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूदु आहिनि। फिलहाल कंहिं बि वफ़द जी मेज़बानी करण या कंहिंजो महिमान थियण जो इरादो न आहे। ओमान सां आबनाए हुरमज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी ॿाहिरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़रर कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिं में मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0302018-00003।
2: रोशनी का काफिला मंजिल की तरफ गामजन। मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर, शानदार तालीमी इमारत, प्रोफेसर कुर्बान अली मेमन, एयर कंडीशन एकेडमिक ब्लॉक का इनेकार, मेहनती मुशाक और तजुर्बेकार तदरीसी अमला, सरसब्ज बागीचा, बेहतरीन फर्नीचर, शानदार कंप्यूटर, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की लैब्स, ऑडियो और विजुअल लेक्चर सिस्टम की सहूलत, केमिस्ट्री फिजिक्स बायोलॉजी रियाजी और इंग्लिश पर खुसूसी तवज्जा, एंट्री टेस्ट के लिए मेडिकल और इंजीनियरिंग में काबिल तहसीन नतायज, खेलों का मैदान और वहां मुनक्किद होने वाले मुकाबले, तहरीर तकरीर और जहनी आजमाइश के मुकाबले, स्टडी टूर्स, अपनी आँखों के नूर बच्चियों और प्यारे बेटों की मयारी तालीम तरबियत के लिए आज ही मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर का विजिट करें। मजीद राबते के लिए डॉक्टर अल्ताफ हुसैन मेमन, मैनेजिंग डायरेक्टर मजहर स्कूल सिस्टम 0300002724। निसार अहमद मेमन, प्रिंसिपल मजहर स्कूल सिस्टम मेहरापुर 0301386543।
3: मेहरान आयरन स्टोर हालाणी, होलसेल डिपो, अ नेम टू बी ट्रस्टेड।
4: सरिया गार्डर टीयर एंगल चैनल पट्टी लोही दरवाजा सिल्वर जा चौंग सीमेंट रेती क्रेश ऐं रंग वगैरह बाजार खां बारियत दस्तियाब आहिनि।
3: हाणे अचो मेहरान आयरन स्टोर नज़्द बलोच पेट्रोल पंप नेशनल हाईवे हालाणी।
4: राब्ते लाइ प्रोप्राइटर गुलाम नबी मुगल 0300320437202 ऐं 0242460100।

0: It's 5:15 PM.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, खरी रोड मेहरापुर, 03003385 69।

0: वठणी पवंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज़ फॉलिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज़ हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-96-898।
1: अव्हां जी स्किन डल ऐं बेरोनक लॻे थी हाणे पंहिंजी स्किन खे ॾियो हिकु नओं गिलो पेश आहे वाइट एश ब्यूटी क्रीम अव्हां जी स्किन खे बणाए फ्रेश सॉफ्ट ऐं ग्लोइंग इन जो स्किन फ्रेंडली फार्मूलो ॾी अव्हां खे रेडियंट लुक रोज़ानो जे इस्तेमाल सां हर क़िस्म जी स्किन जे लाइ परफेक्ट हाणे थियो ख़ूबसूरत थियण वधीक आसान वाइट एश ब्यूटी क्रीम ख़ूबसूरती जेका चमके हर ॾींहुं बहितरीन रिज़ल्ट हासिल करण लाइ वाइट एश ब्यूटी क्रीम सां गॾु इस्तेमाल करियो वाइट एश ब्यूटी सोप वाइट एश ब्यूटी सोप सां मिले चमकदार निखार ताज़गीअ सां गॾु वाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान खुशखबरी क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: आशिक होंडा शोरूम मेहरापुर एटलेस होंडा मोटरसाइकिल टू पर एतमाद ऐं बा अख्तियार 3S डीलर आशिक होंडा मोटर्स मेहरापुर जिते नई मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलेस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद आशिक होंडा मोटर्स ते पंहिंजे होंडा मोटरसाइकिल जी ट्यूनिंग करायो कंप्यूटराइज जैपनी स्टेचिंग मशीन जे ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जे ज़ेर निगरानी आशिक होंडा मोटर्स एड्रेस इंडस बाईपास नज़्द रेलवे लाइन मेहरापुर राब्ते जे लाइ आसिम हुसैन आराई 0307-359-2120

खूबसूरती का असल राज सिर्फ दी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। दी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।

कॉलम में मौजूद आहिन फौजी बायरन लाए खुसूसी रियायत हुंदी राबते लाए फौजी अब्दुल करीम 0301 54 5416 456 तौकीर अहमद 0306

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White Ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ड जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 0300-338-5569।
2: शेख आयाज जी सिस्टम से कयां थो वधिक तां जी जका फरमाइश वसार कोशिश कबी त पूरी कजो।

लाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहराब पर 03003385699।

नवाज लीग जी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने की दावा, पीपल्स पार्टी पाबंदी मलियल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्ज़ाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो तो आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थी। आजाद कश्मीर की 45 सीटों में 23 ते नवाज लीग कामयाबी मानी है। महाजनन के 12 सीटों में भी 10 सीटू नवाज लीग खटियो हैं। दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटों में रुगो 3 सीटू खटी सकया। वफाकी वजीर अता तार चयो है तो नवाज लीग की कामयाबी मुखालफन का हजम न थी रही है। आजाद कश्मीर में नवाज लीग सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है। शर्जील मेमन जो इल्ज़ाम बेबुनियाद हैं। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इना मेमन नू लीग की पंजाब में वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करार दे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमन चयो तो पंजाब में वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इकतदार माणो है। अना भी नवाज लीग माजी में सीखण ला तैयार ना है। नवाज लीग आजाद कश्मीर में धांधली कई, कश्मीरन के वोट से दहाड़ो हयो वो। आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 वाली रवायत के वर्जायो वो है। वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकपुर से बदल हुई। कराची में एमक्यूएम के बिन धड़न में गुजरल डी का शुरू थे छिकताण बाद पुलिस अटाला बहादुराबाद मरकज पहुंची वया। एमक्यूएम अगवाणन के पुलिस के ऑफिस सील करण का रोके छो। शबीर कायम खान ने चयो है तो पुलिस जिबानी हुकुमन से बहादुराबाद मरकज सील कर आई हुई। पुलिस का ऑफिस की बंदिश बाबत लेटर घुरो है। गुजरल रात एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज से खालिद मकबूल सिद्दीकी ए मुस्तफा कमाल ग्रुपन में जेड़ो थो।

हैदराबाद के इलाके हाली रोड वाले इलाके में मुड़स तथा कत्ल थे अठ बार माओ के वारसन जो लाश रखी एहतजाज मकतूला औरत के मुड़स के गिरफ्तार करने जो मुतालबो मुजारिन मूजिब कुर्बान जुबेदा पसंद की शादी कई हुई खेन अठ बार औलाद है कुर्बान जुबेदा के बेगुनाह कत्ल किया है खेस गिरफ्तार किया वे।

0: ऐं भान सईदाबाद वेझो ॻोठ बिलावलपुर में नारी शुमाइला राहपुटो जे पुरसरार मौत वारे केस में अॻभराई। पुलिस नौजवान दिलबर राधण खे हिरासत में वठी छॾियो। पुलिस ज़रियनि मूजिबि नौजवान दिलबर राधण खां पुछा ॻाछा कई पई वञे। नौजवान जो मोबाइल फ़ोन बि पुलिस कब्ज़े में वरितो आहे। जांच दौरान नौजवान ऐं नारीअ जो राब्तो बि साबित थियो। शुमाइला राहपुटो जे माउ इंकशाफ़ कयो त शुमाइला नौजवान दिलबर राधण सां मुहबत कंदी हुई। मुहबत में नाकामी ते हुन आपघात कयो।
1: आप सुन रहे थे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: प्लेन ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फ़ौजी भाइरनि लाइ ख़ुसूसी रियायत हूंदी। राब्ते लाइ फ़ौजी अब्दुल करीम 0301-5431-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-1623-793।
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर। नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए, जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर। फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर। राब्ते जे लाइ 0320180003।
2: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिकर छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है। गहरी सफाई और फोरी ग्लो जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार। फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर। 0300-335-69।
3: अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
4: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
3: अदा दुकान जी मशहूरी कराई अथई
4: न? अदा
5: यार, अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जी मेरापुर FM 94 ई हले थो। मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मेरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब वियो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
4: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
3: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
4: अदा जल्दी कर, मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
5: ऑफिस जी मेरापुर FM 94, नज़द गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालानी रोड मेरापुर।
3: राबते लाए हाकिम अली जिसकानी
6: 0301-399-2836।
7: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है। सुनते रहो जी FM 94।

0: It's 7:15 p.m.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट, बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नजद रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर, 03003385569।

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरापुर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिर अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंग टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन ऐं औरतुन में वज़न जो न वधण उन्हनि सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-2196-851
1: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए नए बालों की निशोनुमा में मदद दे बालों को घना और सेहतमंद बनाए घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद थरी रोड मेहरापुर 0300-338-5569
2: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल की कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनी थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180001

0: नहीं ना दा
1: यार आजकल शहरन तोड़े गोठन में जीए मेरा पर एफएम 94 ई हले थो मु पंजो दुकान खोलियो तो एफएम मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई कारोबार एड़ो कामयाब हो जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे
0: मुझे दुकान जी बेड रंदी
2: हां दा कारोबारी इश्तिहारत आम इतला मिलाद मजलिस सालगिरह जी मुबारक मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आए
0: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा
1: ऑफिस जीए मेरापुर एफएम 94 नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347
3: मेहरापुर के हो तो आवाज भी मेहरापुर की है सुनते रहो जी एफएम 94

खुशखबरी जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक साम्हूं वधण बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेरा पर कराची ऐं इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमण एम ए डी एच एम एस सिंध आर एच एम बी इस्लामाबाद होम्योपैथिक कंसल्टेंट ऐं फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर ऐं

0: पुराणो नज़लो निछो मथे जो सूर नज़र जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट ॿुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियूं ॿारनि में कद जो न वधण मर्दनि ऐं औरतुनि में वज़न जो न वधण सभिनी बीमारियुनि जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राब्ते लाइ 0301-9196-851
1: इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद ऐं बा अख़्तियार इदारो इरशाद ऑटोस ऐं होंडा शोरूम मेहरापुर नईं मोटरसाइकिल जी सेल कंपनीअ जे मुक़ररु कयल रेट ते दस्तियाब आहे सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे होंडा कंपनीअ जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स ख़ुसूसी रियायत ते मौजूद इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज्ड जैपनीज टेस्टिंग मशीन ज़रिए जंहिंमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर फ्यूल एडजस्टमेंट RPM जी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज्ड जापानी मशीन ज़रिए कई वञे थी होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी ज़ेर निगरानी इरशाद ऑटोस हालाणी रोड मेहरापुर राब्ते जे लाइ 0320180003

0: मेरा वाइट एच ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फॉली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एच ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एच ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो तम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशहूरी कराई थई
1: न अदा?
3: यार आज कल शहरन तोड़े गोठन में जी मेरा पर FM 94 ही हले थो। मु पंजो दुकान खोलियो तो FM मेरा पर ते पब्लिसिटी कराई, कारोबार एड़ो कामयाब जो एड बंद कराण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हां अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मिलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर मुखे बुंजी एड्रेस तो बुदा।
3: ऑफिस जी मेरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालानी रोड मेरापुर। राबते लाए मंसूर अहमद मेमन 0301-380-8347।
4: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मेहराबपुर के हो तो आवाज भी मेहराबपुर की है, सुनते रहो GFM 94।

0: ऐं कालम में मौजूद आहिनि। फौजी भाइरन लाइ ख़ुसूसी रिआयत हूंदी। राब्ते लाइ फौजी अब्दुल करीम 0301-54-31-456 ऐं तौकीर अहमद 0306-16-23-793।
1: अस्सलाम वालेकुम अदा।
2: वालेकुम अस्सलाम अदा, छो परेशान आई?
1: अदा नओ दुकान खोलियो अथम पर हले ही न तो, छा कजे?
2: अदा दुकान जी मशवरी कराई अथई?
1: न अदा।
0: यार अॼुकल्ह शहरन तोड़े गोठन में जीअं मीरापुर FM 94 ई हले थो, मूं पंहिंजो दुकान खोलियो त FM मीरापुर ते पब्लिसिटी कराई। कारोबार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंदि कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी बेड हलंदी?
2: हा अदा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइज़िंग हलंदी।
1: अदा जल्दी कर, मुखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधायो।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94, नज गर्ल्स डिग्री कॉलेज, हालाणी रोड, मीरापुर।
2: राबते लाइ हाकिम अली जिस्कानी
3: 0301-399-2836।
4: It's 9:15 PM. This time check is brought to you by
5: White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
6: Mehrabpur ke ho to aawaz bhi Mehrabpur ki hai. Sunte raho GFM 94.
5: खुशखबरी, लेजर हेयर रिमूवल, गैर जरूरी बालों को खत्म करने का जदीद हल। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में गिम्स अस्पताल गंबर्ट जिल्द के मशहूर डॉक्टर बशीर अहमद मेमन लेकर आए हैं चेहरे, बाजू, टांगे और पूरे जिस्म के गैर जरूरी बालों को खत्म करने के लिए महफूज और मौसर ट्रीटमेंट। बार बार वेक्स और शेविंग से निजात, नरम, साफ और खूबसूरत जिल्द, कम वक्त, बेहतरीन नतायज। अब गैर जरूरी बालों की फिक्र खत्म लेजर हेयर रिमूवल के साथ। आज ही राब्ता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक, अक्सा मस्जिद, थरी रोड, मेहरापुर 0300-33-85-69।

0: खुशखबरी, क्या आप बालों के झड़ने से परेशान हैं? अब फिक्र छोड़िए, शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है बालों की जदीद और मौसर इलाज, एक्सोसोम्स एंड पीआरपी ट्रीटमेंट के साथ बालों का झड़ना कम करने में मददगार, कमजोर जड़ों को मजबूत बनाए, नए बालों की निशोनुमा में मदद दे, बालों को घना और सेहतमंद बनाए। घने मजबूत और खूबसूरत बालों के लिए आज ही राबता करें रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
1: इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, होंडा मोटरसाइकिल जो पुर एतमाद आई बा अख्तियार इदारो, इरशाद ऑटोस आई होंडा शोरूम मेहरापुर, नईन मोटरसाइकिल जी सेल कंपनी जे मुकरर कर रेट ते दस्तयाब आहे। सर्विस सेंटर एटलस होंडा लिमिटेड जो वारंटी क्लेम सेंटर सर्विस एरिया, जिते होंडा मोटरसाइकिल जी बेहतरीन सर्विस कई वेंदी आहे। होंडा कंपनी जा तमाम जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स खुसूसी रियायत ते मौजूद। इरशाद ऑटोस ते पंहिंजी होंडा मोटरसाइकिल जी करायो ट्रेनिंग कंप्यूटराइज जैपनीज टेस्टिंग मशीन जरिए, जिनमें मिले थी मोटरसाइकिल जी कारकर्दगी तमाम बेहतर, फ्यूल एडजस्टमेंट, आरपीएमजी एडजस्टमेंट कंप्यूटराइज जापानी मशीन जरिए कई वनिए थी। होंडा जे क्वालिफाइड टेक्नीशियन जी जेर निगरानी। इरशाद ऑटोस हालानी रोड मेहरापुर, राबते जे लाइ 03201800003।
0: खुशखबरी, अपनी जिल्द को दे नई ताजगी, चमक और खूबसूरती हाइड्रा फेशियल के साथ। अब फिक्र छोड़िए, आपके शहर मेहरापुर में रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक लेकर आया है गहरी सफाई और फोरी ग्लो, जिल्द को नरम और हाइड्रेट करे, सन डैमेज और रंगत बेहतर बनाने में मददगार, फेशियल रेजुविनेशन, साफ तरोताजगी और जवान नजर आने वाली जिल्द, जदीद टेक्नोलॉजी के साथ महफूज और मौसर स्किन केयर। नोट, खवातीन स्टाफ की निगरानी में की जाती है। आज ही अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाएं। पता, रोशन स्किन एलर्जी एंड लेजर क्लिनिक, नज़्द रेलवे फाटक अक्सा मस्जिद, थरी रोड मेहरापुर, 03003385569।
2: खुशखबरी, जर्मन होम्योपैथिक क्लिनिक सामू वधन बोटा पेट्रोल पंप कोटड़ी कबीर रोड मेहरापुर, कराची इस्लामाबाद जो मशहूर डॉक्टर मंजूर हुसैन मेमन एमए डीएचएमएस सिंध आरएचएमपी इस्लामाबाद, होम्योपैथिक कंसल्टेंट एंड फैमिली फिजिशियन सीनियर लेक्चरर नवाबशाह होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नवाबशाह, हर अरबा खमीस जुमे छंछर आचर।

मरीजन के दवा स्टोर दा वठनी पौंदी माहिरे अमराज नक कन गलो पुरानो नज़लो निछो मथे जो सूर नजर जी कमजोरी कन जो वण कन जो सूर घट बुधण में अचण शुगर ब्लड प्रेशर दिल जा मर्ज फालिज खंघ टीबी मादे जी अल्सर मादे जी जलन दिली जो वधण जिगर जा मर्ज हेपेटाइटिस बी सी गुर्दे जी पथरी मसाने जी पथरी जो बगैर ऑपरेशन जे कामयाब इलाज कयो वञे थो गुर्दन जो इन्फेक्शन चेहरे जो रंग सांवरो चेहरे जी ख़ारिश फट फुरड़ियों बारन में कद जो न वधण मर्दन औरतन में वजन जो न वधण उन्हें सभी बीमारियों जो कामयाब इलाज कयो वञे थो राबते लाइ 0301 91 896।

0: बार अहिड़ो कामयाब हुयो जो एड बंद कराइण ते दिल्ली नथी चवे।
1: मुंहिंजे दुकान जी भेट हलंदी?
2: हा दा, कारोबारी इश्तिहारात, आम इतला, मीलाद, मजलिस, सालगिरह जी मुबारक, मतलब हर किस्म जी एडवर्टाइजिंग हलंदी आहे।
1: अदा जल्दी कर, मूंखे मुंहिंजी एड्रेस ॿुधा।
0: ऑफिस जी मीरापुर FM 94 नज़ गर्ल्स डिग्री कॉलेज हालाणी रोड मीरापुर। राबते लाइ मंसूर अहमद मेमण 0301-380-8347।
3: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर और मेहराबपुर की आवाज GA FM 94।

0: 的。哦，不木看那多不起的也都过不来呀的。
1: 什么？
0: ਕਾਨਤੋਂ ਵਿਸਰੀ ਰੁਗੋ ਵਾਹੀ ਯਾਦ

0: आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़ टॉक
1: टॉक टिक टॉक आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। ये साफ शफाफ इलेक्शंस नहीं थे, ये दांडली इलेक्शंस थे, ये गोली इलेक्शंस थे, ये कत्ल इलेक्शंस थे, ये खूनी इलेक्शंस थे। ये सब कुछ के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए 9 सीटें निकलवाई हैं। जो आपके चोरी हुए सीटें हैं मीरपुर के, मुजफ्फराबाद के, वो इंशाल्लाह ताला मैं आपको दिलवाऊंगा।
2: पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी जी आजाद कश्मीर की चूंडन में नवाज लीग ते दांधलन जा इल्ज़ाम, मुल्कगीर तहरीक हलण जो ऐलान। बिलावल भुट्टो सरदारी पेंे बयान में चो है तो नवाज लीग हुकूमत जहा डी गणजी चुका है। आजाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी कारकुनन नवाज लीग के डाढ़ जो मुकाबलो कयो ए शहादत माणी। ये शफाफ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ए मुजफ्फराबाद में चोरी कल सीटू उन्हें वापस वठंदुस। नवाज लीग गौर से बुधे संदन डी गणजी चुका है।

0: दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर, मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ हरास कर लिया।
1: नवाज अली कजी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने की दावा, पीपल्स पार्टी से पाबंदी मड़ियल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनावला चयो आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थी। आजाद कश्मीर की 45 सीटों में 23 से नवाज अली कामयाबी मानी है। मुहाजिरन के 12 में भी 10 सीटू नवाज अली खटियो। दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटों में रुगो 3 सीटू खटी सकया। वफाकी वजीर अता तार चौद नवाज लीग की कामयाबी मुखालफन का हजम नती रही है। आजाद कश्मीर में नवाज लीग सादी अक्सरियत हासिल करे वरती है। शर्जील मेमन जा इल्जाम बेबुनियाद है, अवाम तरक्की के वोट दिनो।
2: वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक्तदार पे आए और उसी की रिवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़कर जो है वो उन्होंने कार्रवाइयां की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग्स नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा।
1: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन नून लीग की पंजाब में वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करा दी छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कहते शर्जील मेमन चो तो पंजाब में वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इकतदार माने है। अना भी नवाज है, नवाज लीग आजाद कश्मीर में धांधली कई, कश्मीर के वोट से धाड़ो हयो वो। आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 वाली रवायत के वरजाया वो है। वफाकी वजीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे तकबुर से बदल हुई है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: अपना शहर अपना घर मेहराबपुर, और मेहराबपुर की आवाज GAFM 94।